107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है रविवार, शक संवत 1948, भाद्रपद माह, 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को ही अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉ शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री बेटेल चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर NEET PG की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जयपुर के 5 केंद्रों पर परीक्षा सुचारू तरीके से संपन्न हुई। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी

0: कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन महर्षि वे महर्षि वेदव्यास का कथन है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थ है, मीठे या प्रिय वचन बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए मनुष्य को सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी या बोलने में क्या दरिद्रता, क्या किफायत करना। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 303। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 6। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। सुनिएगा सुबह 9:30 और रात 9:30 पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत सुनेगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 11:00 विविधा के अंतर्गत केंद्रित होगा ये कार्यक्रम मुकरी आदेश श्रीवास्तव और भूपेन हजारिका पर। 12:00 यादों की महफिल, 1:00 सुरीला सफर, 2:00 त्रिवेणी। पर 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम, 3:00 मन चाहे गीत, 3:30 पर नाट्य तरंग। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए आंख की किरकिरी भाग 2, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार और निर्देशक हैं नंदलाल शर्मा। शाम 4:00 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 5:00 छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला होगा शाम 7:00 से। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा सुनिएगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 7:45 पर साज और

आवाज। हवा महल में रात 8 बजे सुनी प्रहसन। मलाई वाला दही, मूल कन्नड़ लेखक एम गोविंद, निर्देशन पुरुषोत्तम दारव्हेकर का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राकेश रोशन पर। रात 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। 11 बजे सुने विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर

रात 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात 11 बजे। सुने विविधा, आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 303।

लंका में श्री राम के वानरदीज सेनानियों ने उत्पात मचा दिया है। मंदोदरी की अपने पति रावण से प्रार्थना है कि वो विषय भोग छोड़कर उन प्रभु की शरण में चला जाए, कौशलाधीश की दया उसे प्राप्त हो जाएगी।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना इस श्रृंखला में आज की कड़ी में डॉक्टर शकुंतला भरणे जी से हम पूछते हैं कि किराना घराने की आज किस विशेषता की बात होने वाली है, ये जो गायकी है इसका निरालापन किस अंदाज में आप आज बताने वाली हैं?
2: इस किराना घराने की जो खासियत है
1: जी,
2: ये
1: जी।
2: सब उनके जो गुण है इंटरकनेक्टेड है। आज हम सोचेंगे मिंड का सुंदर प्रयोग इस घराने में कैसे
1: मिंड का प्रयोग। वाह वाह।
2: मिंड आप जानते हैं, एक स्वर से दूसरे पर स्वर पर जाते हुए उसका जो बीच में विदाउट एनी गैप
1: जी

0: जी जी
1: ऐसा जो
0: एक सुर से दूसरे हाँ, सुर पर जाते हुए बिना रुके जो ये निरंतरता बनी रहती
1: है। हाँ, निरंतरता उसकी जी मेलोडी जो है
0: उसे मिंड कहते हैं। वाह,
1: इस घराने की गायकी में एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना टूटे अत्यंत सहज और मधुर ढंग से पहुंचने की एक शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। स्वरों का कोमल और प्रवाहपूर्ण मेल ये भी इसकी खासियत है। मीन के माध्यम से स्वर आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि गायन में निरंतरता और मधुरता बनी रहती है। यही किराना घराने की गायकी को अत्यंत और आकर्षक बनाता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। मीन के प्रयोग से राग के सूक्ष्म भाव और सरल सौंदर्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं।
0: जी,
1: श्रुति का सुंदर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं मीन के द्वारा। स्वरों के बीच जो स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का भी प्रभावी प्रयोग हमारे घराने में किया जाता है।
0: जी जी,
1: इसमें गायकी में नजाकतता और एक परिष्कार
0: अच्छा
1: आता है। विलंबित लय में मीन का विशेष प्रभाव जो होता है कि किराना घराने में विलंबित लय होने के कारण कलाकार को मिंड का विस्तार पूर्वक प्रयोग करने का अवसर मिलता है, इसलिए वो बहुत ही नजाकतदार लगती है। इससे प्रत्येक स्वर का सौंदर्य पूर्ण रूप से उभर कर सामने आ जाता है।
0: जी,
1: सुंदर मिंड प्रस्तुत करने के लिए स्वर पर गहरा एकदम डीप ऐसा नियंत्रण, श्वास का संतुलन और नियमित रियाज तो हमें यहाँ आवश्यक है। इसलिए मींड इस घराने की उच्च कोटि की स्वर साधना का प्रमाण मानी जाती है।
0: जी,
1: मेरे गुरुजी
0: जी
1: विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल मींड गायकी तो हाँ। उनकी खासियत थी।
0: अच्छा,
1: जिन रागों में मींड है वही राग वो गाती थी ज्यादा। शुद्ध कल्याण, बागेश्री, दरबारी कानड़ा,
0: अच्छा
1: रागेश्री, ऐसे राग आज हम उन्हीं का गाया हुआ थोड़ा सा बागेश्री सुनेंगे। उनकी आवाज पहले बहुत पतली थी
0: जी।
1: और वो सब गाती थी, भावगीत गाती थी, गजल गाती थी।

0: ठुमरी गाती थी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद टॉन्सिल्स हो गए
1: जी जी,
0: और टॉन्सिल्स के वजह से उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो बोल नहीं पाती थी। बाद में उनकी जो आवाज हो गई वो एकदम थोड़ी पुरुषी आवाज हो गई, वजन खरज वाली आवाज। और वो गाना जो उनका हो गया वो और भी अच्छा हो गया, लोगों को पसंद हुआ। और क्लासिकल ही उनका ज्यादा लोगों को पसंद हो गया, और उसने सोचा कि अभी तो लाइट गाने में मतलब नहीं है।
1: अच्छा,
0: इसीलिए वो क्लासिकल ही गाती थी।

0: बागेश्वरी राग में बहुत सारे गाने हैं
1: जी,
0: बहुत ही प्यारा राग है, लेकिन गंगूबाई जी बागेश्वरी में पंचम नहीं लगाती थी, बाकी सब लोग पंचम लगाते, और पंचम का जो सुरीलापन और ये जो नजाकत है, ये पंचम बिना लगाए भी उनकी जो गायकी है वो बहुत ही अच्छा दिखता था उन्हें।
1: तो ये किस तरह का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है कि आरोह आरोह के जो स्वर है किसी राग के चलन में, उसमें से कोई एक स्वर न लगाए बिना भी वो उसको राग का जो है प्रस्तुतिकरण हो सकता है?
0: पंचम का महत्व बागेश्वरी में नहीं है वैसा भी।
1: अच्छा,
0: पंचम का महत्व मा पधा मा गा सा रे सा ऐसा होता है
1: जी,
0: और ये राग का सौंदर्य बढ़ाता है इसीलिए लेते हैं, लेकिन पंचम का इतना इम्पोर्टेंस मध्यम लगा के ही वो बागेश्वरी ज्यादा गाते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो बोलती थी पंचम का कुछ काम ही नहीं, इसीलिए मैं पंचम नहीं लेती और ये जगह नहीं लेती थी। ऐसा है।
1: तो क्यों ना इस राग पर आधारित एक गीत सुन लिया जाए।
0: बहुत ही गाने हैं, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा गाना है वो अनारकली फिल्म का, जाग दर्द इश्क जाग।
1: बहुत सुंदर गीत है, आइए।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनेगा थोड़ी ही देर में।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। सखी रॉबिन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। रचना योगेश की थी, संगीतकार थे रॉबिन बैनर्जी। अब प्रस्तुत है जबक फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में। प्रेम धवन गीतकार हैं, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में जबक फिल्म की ये रचना भी आपने सुनी। प्रेम धवन गीतकार थे, संगीतकार चित्रगुप्त थे। और इस गाने के पहले सखी रॉबिन फिल्म का गीत आपने सुना था, मन्ना डे सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। योगेश ने उस गीत को लिखा था और रॉबिन बैनर्जी ने धुन बनाई थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।

0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुहाग सिंदूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के ये बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्षमा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज थी, कैफी आजमी के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कांच की गुड़िया फिल्म का ये गाना, मुकेश और आशा भोसले के आवाजों में शब्दकार हैं शैलेंद्र।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम मैंने चुनी खूबसूरत।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आज पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ का जन्मदिन, जिन्हें बाद में पूर्णिमा के नाम से जाना गया। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुषमा श्रेष्ठ ने बाल कलाकार से लेकर 90 के दशक के शीर्ष बॉलीवुड गायिका तक का सफर तय किया। उन्होंने सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में फिल्म अंदाज के इस गाने को गाने में आवाज दी। अंदाज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और सुषमा श्रेष्ठ की थी। हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, शंकर जयकिशन का संगीत आपने अभी सुना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। मजरूह सुल्तानपुरी गीतकार थे और संगीतकार थे आर डी वर्मन।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते।

नौशाद के संगीत निर्देशन में आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल थे, फिल्म का नाम राम और श्याम था। लीजिए अब सुनिए आंखों आंखों में ये गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
3: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
4: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
5: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्ति

0: क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमेरिका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
4: आइए सुने त्रिवेणी।

आसपास बिखरी होती हैं, हम खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आज छोटी छोटी बातों में तलाश करें खुशी का खजाना। सुबह सुबह जब चिड़िया मुंडेर पर बैठकर फुदकती है, जब आकाश में चिड़ियों का समूह सैर पर निकलता है, जब नदी के शीतल पानी को स्पर्श कर माथे से हम लगाते हैं, जब अदरक वाली खुशबूदार चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह रेडियो ट्यून करते हैं और रेडियो की सुई विविध भारती पर ठहरा देते हैं, तब होती है असली खुशी। तो चलिए आज रेडियो के साथ खुशी मनाते हैं।

दोस्तों, किसी विशेष तिथि पर जब हम जश्न मनाते हैं तब खुशी में डूब जाते हैं। जश्न के इंतजार में जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है। खुशी हमें मिल जाती है किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर हम खुश हो लेते हैं, किसी की आवाज़ सुनकर हमारा दिन बन जाता है, कोई अपनी पसंद का सुनहरा गीत सुनकर हम होठों पर मुस्कान सजा लेते हैं, खुशी से तरबतर हो सकते हैं। आइए आज दिन भर नहीं, शाम को रात तक बीने खुशियों की सीपियां। इतनी सी

दोस्तों, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो लोगों की छोटी मोटी चालाकियों, धूर्तताओं पर धूल डालकर आगे बढ़ जाएं और देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा है, गुणी है। गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर भी हम खुशी पा लेते हैं। किसी उत्सव, पर्व, त्योहार पर हम खुश हो लेते हैं। कुछ उत्सव आपको सिर्फ एक तिथि की याद नहीं दिलाते, बल्कि आपको खुशियों की टोकरी सौंप देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ आपका मन समृद्ध कर देती हैं। हमारे चारों तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं, जरूरत है उन्हें चुनकर सहेजने की, संवारने की। छोटे से बच्चे की किलकारी आपको खुशी से भर देती है। मासूम बच्चे को हंसाकर हम पाते हैं खुशी। कोई गीत गुनगुनाकर हम पा लेते हैं खुशी। तो चलिए गुनगुनाएं और बांटे सबको ढेर सारी खुशी।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: Gems of India Challenge.

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से

0: संपर्क करें।
1: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जाँच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत कर रहे हैं इस गाने से।

0: तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। स्वाति शर्मा राजेश शांडिल्य की आवाजें थी। वायु ने इस गीत को लिखा था, तनिष्क बागची का संगीत था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
4: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
3: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
4: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
5: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। अमाल मलिक और प्रीतम ने इस गीत को लिखा था। अमाल मलिक का संगीत आपने सुना। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चलिए इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: टाइगर जिंदा है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अतीफ असलम की आवाज में शाद कामिल के बोल थे, विशाल शेखर की धुन थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: सोनू निगम और पलक मुछाल की आवाज़ों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा और अनु मलिक और मिथुन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप चित्रलोक कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।

0: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

0: सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, शब्बीर अहमद के बोलते हिमेश रेशमिया का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। इसका उद्देश्य है लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में बताना, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव करना। आज के इस भागदौड़ में हम अक्सर स्वाद के चक्कर में सेहत को भूल जा रहे हैं और काम की व्यस्तता में पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो आइए हम ये संकल्प लें कि हम स्वयं अच्छा और पोषक भोजन बनाएंगे, खाएंगे और अपने परिवार के साथ ही समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गाना जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

0: जावेद अली, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में कौसर मुनीर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद संगीतकार थे।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: यासिर देसाई की आवाज़ में आप सुन रहे थे गोल्ड फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे आरको प्रभो मुखर्जी।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: चिंगारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमानी कपूर की आवाज़ में। समीर के बोल थे, आदेश श्रीवास्तव का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
1: आज का अखबार।
5: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा नमस्कार। प्रोग्राम आज का अखबार में आपके साथ हैं अब से लेकर 10 बजे तक। आपको मालूम ही हैं इस प्रोग्राम में आपके साथ रहते हैं, अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स हम प्ले करते हैं। जानकारी तो ढेर सारी होती है लेकिन जितनी संभव हो सकती है हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आज सबसे पहले शिक्षक दिवस की बात करेंगे। कल ये दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, शिक्षकों को सम्मानित किया गया और शिक्षकों की जो उपलब्धियां हैं

उन्हें याद किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। और ऐसा ही विशेष कार्यक्रम जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर देश के 82 असाधारण शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। यानी अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ उन्होंने ऐसा नवाचार जो है वो अपने अपने संस्थान में इजाद किया, बच्चों को उससे जोड़ा कि वो अपने आप में एक विलक्षण कहानियां बन गई हैं। तो राष्ट्रपति जी ने कल अपने हाथों से इन्हें सम्मानित किया। और राष्ट्रपति जी ने इस मौके पर कहा कि स्कूली शिक्षा ही शिक्षा व्यवस्था की नींव होती है। तो आइए आपको कुछ ऐसे ही विलक्षण प्रतिभाशाली अपने गुरुओं से मिलाते हैं। जी, सबसे पहले राजस्थान चलते हैं, चंडीगढ़ की भी बात करेंगे, सबसे पहले राजस्थान चलते हैं। झालावाड़ में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिवेंदु सेन ने कम लागत में स्कूल परिसर में लगे लगभग 500 पेड़ों पर विशेष QR कोड लगाए हैं। जी, 500 पेड़ों पर QR कोड लगाए हैं। अब इसमें विशेषता क्या है, यही तो बात जानने की है दोस्तों। जब कोई छात्र स्कूल का अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करता है तो उसे उस पेड़ का वैज्ञानिक नाम, उसके औषधीय गुण और उपयोगिता की जानकारी मिलती है, और वो भी स्थानीय भाषाओं में। सबसे बड़ी बात यह है। और स्थानीय भाषाएं कौन सी वहां की? हाड़ौती है और मालवी है, ऐसी जो स्थानीय भाषाओं में ऑडियो के तौर पर सुनाई देती हैं। यानी आने वाली पीढ़ी को हमारे पेड़ पौधों के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में, प्राचीन समय के जो पेड़ हैं वो किस तरह से गुणकारी हैं, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इन तमाम बातों को के बारे में अपने नवाचार से राजस्थान के झालावाड़ में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिवेंदु सेन ने ये रचना ईजाद की। अब आपको लिए चलते हैं सबसे पहले राजस्थान तो के बाद छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के खिचड़ी के सरकारी मिडिल स्कूल की सुनीता यादव जो शिक्षिका हैं, यादव की बेहतरीन सामुदायिक पहल न्योता भोजन, जी ये पहल है जिसका नाम है न्योता भोजन, और घर घर पुस्तक वाचन, इस अभियान ने उनके स्कूल को 100% बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करने में मदद की है। यानी स्कूल को 100% बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करवाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों ये। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, यहां हर छात्र को नए और समान सीखने के मौके मुहैया कराए गए। महाराष्ट्र के नासिक की कुंडा जयवंत बच्छाव को हर छात्र को नए और समान सीखने के मौके मुहैया कराने पर सम्मानित किया गया। उन्होंने क्या किया है, ये जो शिक्षक हैं जयवंत बच्छाव, इन्होंने 150 से अधिक जरूरतमंद लड़कियों को कम उम्र की शादी से रोककर, यानी कम उम्र में जो शादी होती उसे रोककर आर्थिक और शैक्षणिक मदद मुहैया करा, उनके लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोले हैं। और अब चलते हैं चंडीगढ़ के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं रवि जायसवाल जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, गाड़ी पर बनी मोबाइल साइंस लैब और रिसाइकल की गई चीजों से बना इंटरैक्टिव आउटडोर साइंस और नॉलेज पार्क जैसे नए तरह के पढ़ाने के तरीकों के लिए काम किया, और इसके लिए इन्हें सम्मानित किया। यानी शिक्षकों ने नवाचार जो है वो बनाया, एक तरह के स्टार्टअप्स हैं, और ये जो हैं हमारे छात्रों को एक नई दिशा देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, अपनी परंपरा के साथ जोड़ते हुए आधुनिकता से जोड़ेंगे। तो हमारे शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को हम सलाम करते हैं,

0: उनके लिए सजदा करते हैं। और वैसे कल के दिन हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्कूल में, चाहे वो पहाड़ों पर है, मैदानों पर है, हर एक स्कूल ने, विद्यालय ने शिक्षा दिवस मनाया, हर एक राज्य में मनाया गया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षकों को हमारी तरफ से, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, देश विकास की ओर बढ़ता रहे।
1: कल मिट

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से, FM 107.2 MHz पर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं और रेडियो के साथ साथ आप हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की यात्रा के बारे में, यहाँ एक शताब्दी समारोह में वो शामिल हुए और यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल किया और दिल्ली मेट्रो ट्रेन से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाते वक्त बच्चों से मिले, उनसे बातचीत की और बच्चे भी बड़े उत्साहित दिखे, बड़े खुश हुए प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर और वो भी मेट्रो में। इसके साथ साथ वहाँ विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुँचने पर प्रधानमंत्री ने वहाँ के विद्यार्थियों को संबोधित किया और विद्यार्थियों में भी उत्साह देखते ही बन रहा था। अपने बीच में प्रधानमंत्री को पाकर वो बहुत खुश थे। प्रधानमंत्री ने वहाँ कहा कि देश 2013 की नीतिगत पंगुता से निकलकर अब नीतिगत गतिशीलता के दौर में पहुँच गया है, लेकिन भारत को नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने वाले लोग अब देश की 7.8% की आर्थिक वृद्धि को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिए अपने संबोधन को याद किया। मोदी ने कहा कि उस समय मैंने जो कहा था वो मेरा दृढ़ विश्वास था, मैंने पानी से भरे गिलास का उदाहरण दिया था। कुछ लोग गिलास को आधा भरा देखते हैं जबकि कुछ लोग उसे आधा खाली बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने कहा था कि ऐसे लोग जो गिलास को पूरी तरह भरा हुआ देख सकते हैं, आधा पानी से और आधा हवा से। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस दौर में देश निराशा के माहौल से गुजर रहा था, विकास सबसे पहले निचले स्तर पर था, महंगाई आसमान छू रही थी, उस दौर में घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूम रहे थे, आतंकवादी बेखौफ थे और पाकिस्तान बेकार।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। 9:46 हो चुके हैं। दो और खबरें आपसे पहले शेयर करेंगे, उसके बाद हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लद्दाख में। लद्दाख में भारत ने बनाया अपना पहला रॉक चेक डैम, पाकिस्तान पर रणनीतिक प्रहार, ये आज के अखबार ने लिखा है। सिंधु जल संधि पर बड़ा कदम है, भारत में ही रुकने लगा पानी, 10 फीट तक जलस्तर बढ़ा। केंद्र सरकार ने सिंधु नदी के पानी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पानी का सही और समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख के सिंधु नदी पर उपशी में देश का

पहला रॉक चेक डैम तैयार किया गया है। फिलहाल इसमें 10 फीट तक पानी भर लिया गया है। इस कदम से दोस्तों होगा क्या कि लद्दाख के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा और इस नदी के पानी को भी रोककर अपने उपयोग में लाने की ये योजना बनाई गई है। भारत के हिस्से का पानी जो बहकर पाकिस्तान चला जाता था, अब वो लद्दाख के विकास में काम आएगा। बिना चूना और सीमेंट के बना है ये डैम। 4 करोड़ लीटर है भंडारण क्षमता इसकी। 56 करोड़ की लागत से बनेंगे 36 और डैम। तो लद्दाख के बाद अब चलते हैं भोपाल। भोपाल एक छोटी सी खबर आज की अखबार में है लेकिन उपलब्धि भरी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के रहने वाले 20 वर्षीय सुरेंद्र सिंह चौधरी से जुड़ी ये खबर है। इन्होंने अकेले ही अपने दम पर अजनार नदी को प्रदूषण से बचाया, उसकी सफाई की, अकेले ही, किसी का सहारा नहीं लिया। अब इनकी इस काम को देखते हुए, इनके जज्बे को देखते हुए नीदरलैंड्स की एक मशहूर जो पर्यावरण संस्था है उसने इन्हें नौकरी का ऑफर दिया है। एक शानदार ऑफर मिला है, ऑफर भी नहीं, एक शानदार मिला है। पहचान गए कि एक बंदे में अगर इतना जज्बा है कि अकेले ने पूरी नदी को साफ कर दिया, उसे प्रदूषण रहित कर दिया, तो यह अपने आप में कमाल की बात है। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल हेडलाइंस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को पेंटागन अधिकारियों पर जासूसी का शक, कराया 50 का पॉलीग्राफी टेस्ट। अमेरिका में अधिकारियों पर अविश्वास और जांच का ये पहला दुर्लभ मामला, अखबार ये लिखती है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूत रूस पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर 72 घंटे के लिए रोक दिया हमला। नेपाल में जल प्रलय के 11 दिन बीत गए हैं। चीन और नेपाल का आर्थिक गलियारा तबाह हुआ है, व्यापार ठप हुआ है। और एक चमत्कार भी लिखती है अखबार कि 2 और जिंदगियां बच गई। परिजनों ने तो कर दिया था अंतिम संस्कार, 11वें दिन जिंदा निकली। ये नेपाल की खबर है। और सीबीआई ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ दर्ज किया केस।

तीन ईरानी तेल टैंकरों पर अमेरिका का हमला, चालक दल सुरक्षित। आईआरजीसी ने दो जहाजों पर दागी थी मिसाइलें। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों में जोश है। सुपर 30 की तर्ज पर नक्सल मुक्त क्षेत्र में शिक्षक दे रहे हैं मुफ्त कोचिंग। राज्य मंत्रियों से 11 साल बाद सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

और अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। यूएस ओपन की बात करें, टेनिस की बात करें, तो पहले ही राउंड में रोमांचक ट्राई ब्रेकर में हार कर भी जीत गई विलियम्स बहने। 4 साल बाद लौटी सरीना वीनस ने 3 घंटे से ज्यादा खींचा मैच। बात करते हैं दलीप ट्रॉफी के बारे में। फाइनल में आज से पूर्व का मुकाबला दक्षिण के साथ।

राहुल हटे, पिटिकल सिराज और वैभव पर रहेगी निगाहें। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को 14-0 से रौंदा। कोरिया पर बेटियों की 4-1 से शानदार जीत है। और अब करते हैं महिला क्रिकेट के बारे में बात। भारत ने 68 गेंद पहले हराया पाकिस्तान। T20 एशिया कप में अपने न्यूनतम स्कोर 55 रन पर लुढ़की पाकिस्तानी टीम। भारतीय महिलाएं 7 विकेट से जीती। हरमनप्रीत ने बनाया कप्तानी रिकॉर्ड। 150 T20 मैच में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली कप्तान बनी हरमनप्रीत कौर। ये तो थी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी ये हेडलाइंस हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। खेड़ा वतन पंजाब दियां सीजन 4 का बठिंडा में आगाज किया मुख्यमंत्री ने कहा कि बठिंडा मालवा का दिल है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को वैश्विक शिक्षा हब बनाना मेरा सपना। पंजाब कांग्रेस ने फेरबदल किया, प्रभारी भूपेश बघेल हटाए गए, सचिन पायलट बने प्रभारी। पंजाब में जनगणना 1 दिसंबर से। अब हरियाणा की बात करते हैं। शिक्षक दिवस पर पंचकूला में हुए कार्यक्रम में 89 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल असीम घोष ने कहा कि AI सूचना और उत्तर दे सकता है। AI जो है वो सूचना और उत्तर दे सकता है, शिक्षक विवेक और सही दिशा देते हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शामिल हुए। छात्रों के प्रिय शिक्षकों को आज शिक्षा मंत्री करेंगे सम्मानित। हरियाणा में पहली बार 35,000 छात्रों ने चुने अपने 110 प्रिय शिक्षक।

0: और हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान, घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता, हर बूथ पर जलेगा आशीर्वाद का दिया। लाडो लक्ष्मी योजना में 17 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य। और रेवाड़ी में आज नशे के खिलाफ हाफ मैराथन, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। हिमाचल की बात करें तो रामपुर में बादल फटा, गंगदारी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षक दिवस पर 32 शिक्षकों को प्रदान किए राज्य शिक्षक पुरस्कार और कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा जरूरी है। प्रसिद्ध चूड़धार यात्रा में ढाक से गिरकर देहरा की 27 वर्षीय युवती की मौत हो गई। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम अब समाप्ति की ओर है। स्थानीय खबरों में पंचकूला से जुड़ी खबर है कि पंचकूला जिले में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिले हैं, डेंगू मलेरिया के 20 केस हुए कंफर्म। पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इंदुपाल कौर की टीम ने नैनो कणों में बदलकर तैयार किया एक फार्मूला। ये फार्मूला जो है हल्दी पर आधारित है, अमेरिका से मिला पेटेंट। ये तो थी स्थानीय सूचनाएं। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: आज का अखबार,
0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 10 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
4: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
3: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
5: जो निर्देश होगा, जो भी

0: प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के एक अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1,344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नुवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के ही हे जी टिंग और रेन जियांगजू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अर्जियन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया था। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हो चुके हैं। अगला प्रोग्राम है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
3: धीमे इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: प्रस्तुत है लाइव ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और किसी एक मुद्दे पर बात करेंगे, विचार साझे करेंगे, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे और इस प्रोग्राम का कारवां आगे बढ़ाएंगे, यानी मंजिल तक पहुँचाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में दोस्तों खाने पीने से जुड़ी बातें हैं, और वैसे भी आज संडे है, रविवार है, फंडे है, मस्ती का दिन है, खाने पीने का दिन है। और खाने में आज क्या बनाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, बाहर खाना है, घर खाना है, इन तमाम बातों के बारे में लेकर आज बात होती है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि यही वो दिन होता है जब हम आराम से बैठकर खा पी सकते हैं। लेकिन खाना केवल खाना नहीं है, हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, हमें संबल देता है, और इसीलिए हमारा खाना केवल खाना नहीं होना चाहिए। हमारे खाने में क्या है, क्या नहीं है, कितना सेहतमंद है, ये ज़रूर पता होना चाहिए और इस पर नज़र होनी चाहिए। आज इसी से जुड़ा मुद्दा है, यानी विषय है, तो नोट कीजिए कि फास्ट फूड ही नहीं, बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की आदत। तो इस आदत के बारे में आपने हमें बताना है, यानी ये आदत डालने के लिए आप अपने घर में किस तरह से पौष्टिक आहार बच्चों को परोसते हैं, पौष्टिक भी हो जाता है, स्वाद भी हो जाता है, और जिस तरह का रंग रूप उन्हें पसंद है, जिस रंग रूप में वो खाने को पसंद करते हैं, उसी रंग रूप में पौष्टिकता को डालकर आप परोसते हैं, तो एक तो आप कमाल करते हैं, बच्चों की बात भी रह जाती है और पौष्टिकता के साथ भी कोई समझौता नहीं होता है। तो इस आदत के बारे में आपने बताना है कि फास्ट फूड ही नहीं, बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की आदत। तो ये आदत क्यों डालनी चाहिए और ये आदत किस तरह से डाली जा सकती है, इस आदत के लिए आपको क्या करना होता है, इन तमाम बातों के बारे में आपने बताना है। और आप किस तरह से इस को लेकर काम करते हैं वो भी बताइएगा, रेसिपीज बताइए कि ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तमाम सुनने वालों तक पहुंचेंगे, शेयर करेंगे, स्वाद का स्वाद और चीज़ें तरह तरह की मिलेंगे आज के इस प्रोग्राम में, हमें इस बात का पूरा यकीन है। तो हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, 1517 19, ये तीन नंबर्स हैं। पहले नंबर्स वही हैं 2660615 17 19 19। तो इन तीन नंबरों को अपने सामने रखिए, किसी एक को डायल कीजिए, एक नहीं मिलता तो दूसरा, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा, और हमसे बात कर लीजिए। तो फिलहाल अभी हमारे श्रोता नहीं पहुंचे हैं, तो छोटा सा अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
2: योजना।

0: जवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो हमारे श्रोता इसी बीच आप पहुंचे हैं, और फास्ट फूड ही नहीं बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की भी आदत। वैसे पौष्टिक आहार पहले होना चाहिए और फास्ट फूड जो है लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
2: वाह योगेश भाई, क्या हाल है छत्तीसगढ़ से?
3: जी जी जी,
2: कमाल कर दिया आपने भाई।
3: जी भैया,
2: मैंने कहा कमाल कर दिया आपने।
3: जी,
2: और देखिए एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए भी है ना।
3: जी, जी।
2: शिक्षक दिवस पर आपके राज्य की शिक्षिका है सुनीता यादव, शायद उन्हें पुरस्कार मिला है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो आपको शुभकामनाएं।
3: जी जी, धन्यवाद भैया
2: जी। क्या कहना चाहेंगे आप?
3: ये तो बहुत बड़ा आज के समय में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी लगता है भैया, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या होता है, चाहे वो दुकान चले जाएंगे या कुछ भी मार्केट में आप जाओ तो वो भेल गुपचुप को ही बताते हैं। तो हमें सबसे बड़ा काम तो यही करना है भैया कि हम घर में हमेशा जो पौष्टिक चीजें हैं उन्हीं को बनाएं, और ज्यादा तवज्जो ना दे जो जंक फूड वगैरह, मैगी वगैरह हो गया, कुछ इस तरह की चीजें हो गया।
2: जी, हम तो कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए।
3: जी, मतलब जितना हो सके, जैसे अब हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह रोटी बनता है, तो यही एक कोशिश बेहतर है भैया। मतलब आदत हम बच्चों में शुरू से ना डालें, क्योंकि अगर शुरू में लत लग गई तो फिर बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। बहुत परेशान भी करते हैं फिर उस चीज के लिए।
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बच्चों में ये आदत होनी चाहिए कि घर का जो 3 समय का खाना बनता है
3: जी,
2: उसमें नाश्ता है, दोपहर का भोजन है
3: जी,
2: और रात्रि का भोजन है
3: जी।
2: कुछ लोग तो आजकल रात्रि का भोजन नहीं करते, लेकिन जो करते हैं 3 समय का भोजन, तो घर का भोजन जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए
3: जी,
2: क्योंकि उसी में दाल चावल सब्जी सलाद बाकी सब कुछ मिल जाता है आपको
3: जी, जी, जी,
2: उसमें
3: जी।
2: भरपूर ऊर्जा मिलती है, विटामिन्स मिल जाते हैं
3: जी,
2: और फिर दिन भर कुछ फल खाए जाएं, कुछ सब्जियां खाई जाएं,
3: और वो आज से केवल बच्चों तक ही सीमित न रहे भैया। हम तो कहते हैं जो हम लोग भी जो है पेरेंट्स जो हैं, वो भी उनके सामने में उस तरह का ही मतलब कह सकते हैं प्रदर्शित करें, जो हम खाएंगे बच्चे उनको भी देखकर बहुत कुछ सीखते समझते हैं।
2: वो इनडायरेक्टली हो गए ना कि जब आप हाँ। खाएंगे बैठ के खाना घर का
3: जी,
2: तभी जब आप खाएंगे तभी बच्चों को बोलेंगे।
3: हाँ जी।
2: अच्छा ये बताइए भैया कि आपके गाँव में
3: हाँ।
2: कोई खास रेसिपी हो जिस जो ऊर्जा से भरपूर हो, उसमें सब कुछ हो सेहत के लिए, और कोई देसी स्टाइल की कोई हो?
3: देखिए भैया, अब ज्यादातर तो ऑल सीजन जो मिलने वाली चीजें हैं, अब जो सलाद वगैरह है वो तो प्रायः सभी जगह मिलते हैं, तो यही सबसे ज्यादा अच्छी चीजें है भैया, सस्ता और मतलब प्रतिदिन डेली रूटीन में मतलब दे सकते हैं बच्चों को।
2: देखिए अपने अपने राज्य की कोई खासियत होती ना, तो देसी खाना होता है।
3: खासियत में कहे भैया तो हमारे यहाँ जो गर्मी का समय होता है उसमें थोड़ा वो बोरेबासी का प्रचलन है काफी।
2: अच्छा, किसका?
3: बोरेबासी जी, और 1 मई को तो विशेष रूप से प्रदेश स्तर में वो दिवस भी घोषित कर दिया गया है।
2: अच्छा, इसमें क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा, और क्या खाने में क्या होता है ये बोराबासी?
3: ये जो जो भैया चावल जो जैसे बच जाता है ना रात वात को, तो उनको पानी में या फिर जो हाँ पानी में ही कर सकते हैं, रात भर भिगवा देंगे और सुबह उसमें जैसे दही वगैरह

0: ला सकते हैं अचार वगैरह के साथ,
1: अच्छा
0: वगैरह। हाँ
1: वो थोड़ा
0: तो वो
1: खट्टापन आने
0: गर्मी
1: के
0: के
1: लिए।
0: दिनों में काफी प्रचलन में रहता है।
1: हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये आपकी कहते हैं कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता होगा,
0: जी
1: पेट के लिए बड़ा अच्छा होता होगा,
0: हाँ जी,
1: है ना,
0: ठंडी चीजें हैं।
1: ठंडी चीजें। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बातें करके अच्छा लगा और आपने बोराबासी के बारे में बताया, है
0: जी,
1: ना।
0: और अभी खेत खलिहान से आपसे बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है, क्या लगा हुआ खेत में?
0: अभी धान लगाए हैं भैया सभी खेतों में।
1: अच्छा, चलिए आपकी धान की फसल बहुत अच्छी हो,
0: जी
1: लहराए लहलहाए,
0: जी
1: ये हमारी
0: बहुत बहुत
1: शुभकामनाएं।
0: जी,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद
0: जी,
1: बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: हेलो चंडीगढ़
2: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से। जी
1: क्या बात है राकेश जी, आप तो कमाल करते हैं, आप जब मिलाते मिल जाता है।
2: जी आपसे पहले तो मैं अभी शिमला गया था, तो शिमला से बाद आपके पास आ गया था।
1: अच्छा शिमला बात हो गई। अरे
2: हाँ शिमला बात हो गई, धर्मशाला भी हो गई, अब विजयपुरम पोर्ट पे लगाएंगे अंडमान निकोबार पे।
1: अरे, शिमला धर्मशाला वाले सब ठीक ठाक हैं?
2: जी, सब ठीक ठाक
1: अच्छा, तो राकेश जी आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे?
2: आज के टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है, मैं आज एक विशेषज्ञ से बात की थी आरोग्यम में, धर्मशाला पे 9 बजे, कुपोषण के बारे में। तो उन्होंने बात की थी कि कुपोषण से बच्चों की किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने जो बोला तो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माँ बाप को क्या करते हैं, बच्चों को जो है, जैसे कि बचपन में क्या करते हैं, टॉफी मुंह में डाल देते हैं, चलो ये थोड़ा थोड़ा चूस लेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि टॉफी नहीं, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि 6 मिनट तक तो माँ का दूध देना चाहिए, और माँ का दूध अगर हम देंगे तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उनको, जैसे चावल हो गए 1 साल से, तो चाहे अगर 1 चम्मच खाएगा तो वो भी काफी है। ऐसा नहीं कि भाई जितना हम खाएंगे बच्चा उतना खाएगा, धीरे धीरे आदत डालो, फिर धीरे धीरे आदत डाल के फिर बच्चा जो है सही पोषण जो है पहुंचा पाएगा। और जंक फूड से बच्चों को हमेशा जीरो रखना चाहिए।
1: आप देखिए, जब हर चीज के बारे में ये बोलते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होता है,
2: जी जी
1: तो
2: जी
1: समय के साथ साथ खान पान का भी परिवर्तन होता है,
2: जी जी
1: उसमें नए
2: जी
1: नए आयाम जुड़ते हैं, नए रंग रूप जुड़ते हैं,
2: जी जी जी
1: लेकिन उसमें हर एक भोजन में ये देखने की बात होनी चाहिए कि इसमें पौष्टिकता का मापदंड कितना है,
2: जी जी जी
1: क्या
2: जी
1: है।
2: जैसे
1: तो
2: कि हम
1: अगर बच्चों को ये कहें कि नहीं आपने नहीं खाना बाहर, बिल्कुल नहीं खाना, इधर वहाँ नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन
2: जी
1: अगर
2: जी
1: हम घर का माहौल ऐसा बनाएं,
2: जी जी
1: ऐसी आदत डाल लें कि 3 समय का भोजन घर में बैठ के ही होगा, तो अपने आप आदत बन जाएगी
2: जी,
1: और घर के खाने का जो स्वाद आएगा फिर उन्हें अपने आप बाहर कहीं और नजर नहीं आएगा।
2: जी जी जी जी
1: हाँ,
2: तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो घर में बनते हैं रेसिपी, तो हम वो भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, जैसे कि चावल दाल, और खास जो है हमारे जो सीडू बनता है वो बच्चों को हम खिलाते हैं, तो फिर वो चावल से खाते। कई बार हमारे जो हम बचपन में, तो हम बचपन में मम्मी को कहते थे कि एक बस हमें सीडू बना के दीजिए, तो फिर मम्मी बना लेती थी, फिर शाम को आटा गूंदना, तो फिर सुबह सीधे सीडू जो है बन के तैयार हो जाता था।
1: अरे सिड्डू बड़ा स्वाद होता है, घर में बनाया आज की नहीं?
2: जी कल बनाया था, चाय के साथ खाया था।
1: क्या बात है, चाय के साथ क्यों खाया उसको?
2: क्योंकि उसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, या घी के साथ भी खा सकते हैं,
1: हाँ।
2: या ये घी शक्कर के साथ भी खा सकते हैं, और
1: खा
2: अच्छे
1: सकते
2: खा
1: हैं।
2: सकते हैं उसके अंदर।
1: अच्छा, जो सिड्डू बनाया उसका मटेरियल क्या था?
2: उसमें मटेरियल तो है जैसे बंजीरी हो गई, जैसे अखरोट अखरोट हो गए, इसको भी डाल सकते हैं, जैसे कि मतलब जो जो खाने पीने की चीज, जैसे कि जो जिससे चटनी बनती है, तो उसको दाना दाना, जैसे तील हो गया, तो उसको भी डाल सकते हैं पीस के।
1: अच्छा देखिए कितना पौष्टिकता से भरपूर है ये।
2: जी जी जी जी
1: और ये आप जितना भी खाएं आपको हल्का लगेगा, भारीपन नहीं लगेगा सिड्डू खा के?
2: जी जी नहीं, हाँ। भारीपन नहीं लगता, लेकिन हम कभी कभार सर्दी में तो हम खाते ही खाते, कई बार
1: और
2: कई बार
1: देखने देखने में भी
2: रोटी में।
1: देखने में बड़ा सरल सादा सा,
2: जी जी बिल्कुल,
1: लेकिन आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिसे सिड्डू की आदत पड़ जाए तो सिड्डू जरूर मांगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।
2: जी,
1: भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में राकेश जी, हमें रुकना चाहिए।
2: जी

0: जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है, करियर को लेकर है, अपने आप को बनाने संवारने की है। ऐसे में उन्हें ये देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, जो भी खा रहे हैं वो पौष्टिकता से भरपूर है कि नहीं। उसके लिए बस थोड़ा सा हमें रुकना होता है, एक नज़र भर की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज का टॉपिक है फास्ट फूड ही नहीं बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की भी आदत। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। क्या नाम बताया जी?
1: माया शर्मा पंचकुला।
0: माया शर्मा पंचकुला, कहाँ से माया जी? अच्छा अच्छा अच्छा, आज पंचकुला कहाँ आप आए?
1: पंचकुला अभी तो हमीरपुर से चले हैं।
0: अच्छा,
1: आपसे आगे भी बात हुई है
0: जी? जरूर हुई होगी। तो माया जी आपका बहुत बहुत हम
1: जब हमने पौधों के बारे में बात की थी तो मैंने बोला था आपको एवोकाडो के पौधे ले जाया मैंने।
0: अच्छा, तो देखिए आप हमीरपुर से पंचकुला आ रही हैं और रास्ते में हम आपके साथ साथ हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है।
0: आपकी आपकी गाड़ी में है?
1: हम गाड़ी में हसबैंड ड्राइव कर रहे हैं
0: जी। तो बताइए आज के टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है?
1: अच्छा टॉपिक है, मैं तो मेरी बेटी है दिल्ली में, तो उसके बच्चे जो है ना तो उसको घर का ही खाना खिलाते हैं वो हमेशा ही। जैसे
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: नॉर्थ इंडिया में तो परांठे खाएंगे, पनीर के चले गए, आलू के चले गए, तो वो

0: इंडियन खाना ही मतलब तीनों टाइम तो घर में खाते हैं
1: जी,
0: और एक दिन रखा हुआ ना जंक फूड, फिर अपने आप बोलते हैं आज जंक फूड का डे है
1: जी, आउटिंग का दिन है आज,
0: आउटिंग का जंक फूड का डे, तो एक दिन मतलब एक टाइम बस
1: जी जी जी फॉर ए चेंज, फॉर ए चेंज।
0: हाँ,
1: तो उनको उनको भी लगता होगा बच्चों को कि देखिए अब हमने पूरे सप्ताह जो है जैसा कहा गया वैसा खाया है ना, और अब ये दिन है आज के दिन हमें बाहर जाना है, और हम इस प्रोग्राम में ये तो नहीं कह रहे हैं कि फास्ट फूड खाना ही नहीं है या बाहर नहीं जाना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फास्ट फूड भी में भी पौष्टिकता को तो देखा जा सकता है कि है कि नहीं।
0: इस बार मोदी जी ने भी मन की बात में वो आवाकाडो की बात करी थी, और मैंने आवाकाडो के दो फेवरेट पौधे लगाए, मैं बाहर से लाई थी फॉरन में देखा।
1: कौन से पौधे लगाए आपने?
0: आवाकाडो।
1: अच्छा आवाकाडो के, जी जी जी।
0: हाँ, तो
1: वो भी आजकल बड़ा हॉट फ्रूट बना हुआ है।
0: हाँ, वो हम बाहर बेटा बाहर है
1: वो भी, तो एक स्टाइल बन गया है आजकल।
0: हाँ,
1: के जी किस चीज का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जी? एवोकाडो का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं।
0: हाँ जी, हम तो डेली करते थे वहाँ पर, यहाँ भी मिलता।
1: वैसे ये सुना है कि काफी गुणकारी होता है।
0: हाँ जी, वो हार्ट के लिए अच्छा।
1: अच्छा अच्छा, वो दिल के लिए अच्छा होता है, तो दिल के लिए तो घर का खाना जो है वो तो दिल में बसा होता है, वो तो दिल के लिए अच्छा होता है, सुपाच्य भी होता है, हल्का भी होता है, पौष्टिक भी होता है, लेकिन साथ साथ फ्रूट्स जब हम शामिल करते हैं, सब्जियां अलग अलग शामिल करते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां शामिल करते हैं, अब तो मौसम आने वाला है।
0: हाँ जी, तो मौसम आने वाला
1: जी जी जी। अच्छा अच्छा माया जी, कोई ऐसी खास कोई देसी डिश आप अपने घर में बनाती हूँ सिखाकर बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं, और हल्की सी भी हो, बनाने में भी समय ना लगे लेकिन पौष्टिकता से भरपूर हो, इस वक्त कोई याद है?
0: फ्रूट चाट बनाते हैं।
1: अच्छा, फ्रूट चाट बनाते
0: हैं, काट के चाट बनाते हैं, नमक नहीं डालते हम, सिंपल बनाते हैं,
1: नमक नहीं डालते,
0: बच्चे सारे खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं।
1: मतलब ये कहा जाए कि आपके घर में बैलेंस्ड जो डाइट है उसका सेवन होता है?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: क्या बात, दाल
0: बेटी बनती है हमारे, चावल दाल और एक सब्जी दही, मतलब
1: अच्छा, ये आपके साहब बता रहे हैं?
0: हाँ जी,
1: साथ में साहब बैठे हैं ये बता रहे हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, ये बता रहे हैं। बात कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं ना?
1: हाँ, कोई बात नहीं, नहीं उन्हें ड्राइव करने दीजिए, बस बस हमारा, हाँ नमस्कार कर दीजिए जी।
2: बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम,
1: थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है जी?
2: प्रेम शर्मा
1: जी। क्या नाम बताया?
0: प्रेम शर्मा।
1: अच्छा जी, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सफर जो है, जी जी, तो आपका सफर सुहाना रहे, आराम से ध्यान पूर्वक पंचकूला लौटिए, बेस्ट ऑफ जर्नी।
0: थैंक यू
1: जी, बेस्ट ऑफ जर्नी।

0: और बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान हमें रखना है कि हमारी थाली में क्या है, क्या हम पौष्टिकता से भरपूर खाना ले रहे हैं, खासतौर से घर के बच्चों के लिए। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माता पिता के लिए बच्चे ही होते हैं, तो बच्चों का ख्याल जो है वो हमें रखना है। और आज का टॉपिक है फास्ट फूड ही नहीं, बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की भी आदत। अब इस प्रोग्राम के प्रायोजक यहीं तक हमारे साथ रहे, वो क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
4: अरोड़ा प्लाईवुड,
5: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: वेलकम बैक दोस्तों, लाइव ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। आज हम पौष्टिक आहार पर बात कर रहे हैं, यानी फास्ट फूड ही नहीं बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की भी आदत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रोग्राम के बारे में बता दें कि आप सबको मालूम है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला हमारे यहाँ से प्रसारित की जाती है, यादों का कारवां। इसके अंतर्गत

0: अंतर्गत पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा के तहत सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे श्री हरमन सिद्धू जो समाज सेवक हैं उनके जीवन संघर्ष की कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कहानी का आज आप सुनेंगे दूसरा भाग। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं ओमपाल बोल रहा हूँ जी।

0: हेलो चंडीगढ़
1: हेलो। हाँ जी,
0: जी।
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं ओमपाल बोल रहा हूँ जी, अम्बाला सिटी से। बहुत
0: ओमपाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था, कई सप्ताह से सोच रहा था।
0: तुझे मिलने की तमन्ना है, वो आपकी पूरी हो
1: मिलने
0: गया,
1: का इरादा है,
0: और एक वादा है जान
1: अर्जुनम।
0: जी।
1: बस सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है मेरे को, और इतनी बातें होती है ना। मैं लास्ट वीक भी आपसे बहुत ट्राई किया, पर मेरे को नहीं मिल पाया। मैं मगर अनिल जी से बात करेंगे।
0: तो कीजिए सर साहब, बात कीजिए, आपका प्रोग्राम
1: हाँ तो
0: है।
1: सर, आज का टॉपिक जो है पौष्टिकता पे आधारित है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो पौष्टिकता हम सब मिलके बैठ के खाते हैं, उसमें भी पौष्टिकता आती है। और दूसरा, जो दाल सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, जो बच्चे कई नहीं खाते, उनको मतलब आदत डालनी चाहिए और उनको खिलाना भी चाहिए। जबरदस्ती खिलाए तो जैसे मर्जी खिलाए।
0: भाई
1: दूसरा,
0: एक,
1: फल फ्रूट है,
0: हाँ
1: इनको टाइम से जो है मतलब कोई सलाद
0: नहीं
1: है,
0: नहीं
1: खीरा है,
0: ओमपाल
1: अचार
0: जी, देखिए वो तो सबको मालूम है कि सब्जियां हैं, फल हैं, दालें
1: है।
0: हैं,
1: हाँ
0: हर घर
1: हाँ
0: में वही होता है भारतीय रसोई में।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: लेकिन अब थोड़ा मुंह बनाते हैं बच्चे कई बार खाने के लिए, जिस हिसाब से हम बनाते हैं, जैसे बनता आ रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उसको कैसे एक नए अंदाज में पिरो के बनाया जाए, वो आदत कैसे डाली जाए, वो आदत के बारे में बात कर रहे हैं, खिलाना क्या चाहिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आदत कैसे
1: अरे
0: डाली जाए।
1: आदत तो जब हम स्वयं उसको यूज करेंगे, बच्चों को प्रयोग करेंगे, जब हम
0: नहीं मैं तो
1: उनको,
0: बता रहा हूं कि हम करते हैं, जैसे
1: हाँ
0: सब्जी
1: हम
0: आप खाते हैं, अब आपका बच्चा नहीं खाता, आप उसको कैसे खिलाएंगे? कोई
1: थोड़ा सा
0: कोई मेथड आपके पास हो, आपके घर में बनता हो?
1: हाँ फोर्स तो करना ही पड़ेगा जी उसको। थोड़ा सा उसका टेस्ट बदलो, तो उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो जैसे हम कोई कविता गाते हैं तो उसमें हल्का हल्का थोड़ा सा उसमें कहीं से वो डाल देते हैं भाई, साइड का है वो, तो उसमें कोई ऐसी चीज मतलब ऐसे हम बनाए ताकि बच्चों को अच्छा लगे, पौष्टिक लगे, खाए भी मन से खाए।
0: और कई
1: तो
0: बारी जो महिलाएं होती हैं वो बहुत मेहनत करती हैं भाई, वो क्या
1: हाँ
0: करती
1: बिल्कुल
0: हैं कि
1: करती है
0: आज
1: जी।
0: लौकी की सब्जी अगर हम वैसे बनाएंगे काट के, तो बच्चे मुंह
1: नहीं खाएंगे।
0: बनाएंगे, तो अब लौकी की सब्जी को शानदार, जानदार रंग रूप कुछ अलग से बनाया जाए,
1: तो उसमें चने की दाल डाल दो या कुछ भी, मतलब और भी कुछ है, कई चीजें
0: तो
1: हैं
0: वो
1: मतलब
0: क्या करती
1: जैसे
0: हैं, वो सबसे
1: हाँ,
0: पहले सोशल मीडिया पे जाती हैं आजकल
1: उस पर ये देखते सोशल मीडिया पर भी क्या कैसे क्या
0: और
1: बनता
0: जिसने जो जो बनाया वो डाल देता है,
1: है। हाँ जी हाँ जी हाँ
0: और
1: जी।
0: सबको एक रास्ता मिल जाता है कि लौकी की सब्जी अगर आप यूं बनाएंगे तो कमाल हो जाएगा, घर
1: हाँ
0: वाले मतलब हाथ चाट चाट रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ
1: हाँ जी हाँ जी। अच्छा पता है क्या है, कई बार लौकी की सब्जी है ना, बड़ी सूखी बना लेते हैं एकदम, वो भी बड़ी टेस्टी बनती है, कहते वाओ।
0: वो कई
1: कई
0: तरीके हैं
1: बार
0: उसके, उसके कई
1: हाँ
0: तरीके हैं बनाने
1: कई
0: के।
1: तरह, बिल्कुल सूखी बना लो थोड़ा सा, नहीं तो वैसे तो तरी हल्की
0: अब
1: सी
0: ये आपकी
1: तरी
0: बात
1: होते
0: सही
1: हैं।
0: है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा क्या बोलते हैं कि अपनापन देना पड़ता है
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: खाना बनाने में भी, खाना खाने में भी। वो आपने शुरू में ही कहा कि मिलकर बैठकर खाने में भी पौष्टिकता है। हाँ
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अगर
0: सही कहा
1: हम वही चीज हम भी खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे तो कितना आनंद आएगा,
0: जी।
1: बोलना बहुत आनंद आएगा। और रही स्कूल के बच्चों के लिए, तो जैसे जी सवेरे आप हरी मूंग ले आओ, रात को भिगो दो, सवेरे उसको क्या कहते हैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करो, हल्का सा नमक डालो और दे दो,
0: और
1: दूध दे
0: देखिए
1: दो, फ्रूट है।
0: भारत सरकार स्कूलों में जो मिड डे मील दे रही है,
1: हाँ जी हाँ जी
0: उस मिड डे मील में भी उसे पौष्टिकता से मतलब पूरी तरह से लोड किया जाता है कि
1: जी
0: बच्चों
1: जी
0: को प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलें, है
1: हाँ जी हाँ जी
0: ना, उनको विटामिंस भी मिलें, तो
1: बिल्कुल जी।
0: इस
1: बहुत कुछ
0: बात
1: है
0: का
1: जी
0: ख्याल रखा
1: ऐसा,
0: जाता है।
1: बहुत कुछ है इसमें। न्यूट्री है, जैसे सोयाबीन की न्यूट्री है, कई बच्चे नहीं खाते, कहते नहीं, पर वो बहुत पौष्टिकता होती है उसके अंदर।
0: अच्छा, न्यूट्री का बनाने का बड़ा सरल सा एक तरीका भी है,
1: हाँ जी
0: न्यूट्री भिगो लीजिए,
1: हाँ
0: सुबह उसे
1: जी
0: ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड
1: हाँ
0: करने के बाद उसमें मसाले डालिए, कुछ हरी सब्जियां डालिए
1: हाँ जी,
0: और थोड़ा
1: बहुत
0: सा
1: टेस्टी
0: दही डाल
1: बनती
0: के 5-10 मिनट उसे रखिए, और तवे पे उसका पूड़ा बनाइए, देखिए कौन नहीं खाएगा।
1: है। सब खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे जी,
0: हाँ सब
1: सब खाएंगे,
0: खाएंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
0: प्रोटीन
1: टेस्टी
0: का
1: बनता है।
0: प्रोटीन हो जाए।

0: जाएगा और स्वाद का स्वाद हो जाएगा,
1: स्वाद का स्वाद हो जाएगा।
0: हम्म,
1: तो सर इसमें मतलब कहने का यह है बच्चों को थोड़ा सा डालना पड़ेगा। अब कई बच्चे नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते, कहते जी हम कद्दू नहीं खाते। अरे कद्दू क्यों नहीं खाते, मैं भी नहीं खाता था पहले कद्दू।
0: फिर कैसे खाना शुरू किया?
1: तो सर पता है क्या है, मेरी मम्मी है ना क्या करती थी कि ना गुड़ डाल देती थी ज्यादा कद्दू में।
0: हाँ,
1: जबकि डालते तो हैं, जरूर डालते हैं, खट्टा मीठा,
0: खट्टा मीठा कद्दू।
1: हाँ जी, हाँ जी, तो वो है ना थोड़ा तरीदार बना देते थे उसको।
0: वैसे ऐसी बात नहीं है, अब बच्चों में बड़ी जागरूकता है, ऐसी बात नहीं है।
1: हाँ।
0: और बच्चे अब लौकी हो, घिया हो, कद्दू हो, ये सब्जियां खाते हैं। और कद्दू तो कहते हैं कि खाना बड़ा जरूरी है, ये तो
1: पाचन शक्ति
0: भी होमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको ठीक करता है शरीर में।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ,

0: दोस्तों, ज़माना आता है, ज़माना बदलता है, मौसम आते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन पौष्टिकता से समझौता महंगा पड़ता है। इसलिए पौष्टिक आहार हमारे जीवन का एक अटूट अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि आज खाने के बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत कुछ है आसपास हमारे, हमें भी मालूम नहीं चलता कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। लेकिन जो पारंपरिक भोजन है, भारतीय भोजन, उसे हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। उसके बाद हमारा कुछ दिल करता है तो अलग बात है, लेकिन पौष्टिकता से भरपूर जो अन्न है, जो हमारा खाना है, उसे खाना हम सब के लिए हितकारी है। और आज ये जो टॉपिक है, हमने इस वजह से चुना है क्योंकि 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक लोगों को संतुलित आहार, केवल आहार नहीं, संतुलित आहार, स्वास्थ्य और सही पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया जाता है 1 से 7 सितंबर जो है। तो इस पोषण सप्ताह में पोषण को लेकर जागरूक रहिए, जागरूकता बढ़ाइए, और देश का जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उन्हें सही पोषण मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए अब आगे बढ़ें, अगले श्रोता से बात करें, लेकिन हमारे श्रोता अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। तो फिलहाल यहाँ एक छोटा सा हम अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर लौटते हैं। जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताते हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 30 सितंबर।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है, कल इसकी आखिरी तारीख है इसकी, लेकिन पोषण तो हमारे जीवन का हिस्सा है दोस्तों। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस सब के बारे में हमें मालूम कई बार होता है, लेकिन स्वाद के चक्कर में कभी कभी हम पोषण छोड़ देते हैं और जाने अनजाने में अपनी सेहत से हम खिलवाड़ करते हैं। तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस सप्ताह में बहुत से सेमिनार्स करवाए जाते हैं, लगभग हर स्कूल जो है, संस्थान जो है, अपने यहाँ एक्सपर्ट्स को बुलाता है, वो उसे बताते हैं कि खाना पीना क्यों ज़रूरी है। और जो हम पारंपरिक अनाज खा रहे हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, इसके साथ साथ अगर हम अपने घरों में

पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए अलग अलग मिलेट्स का श्री अन्न का इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे फायदे का होता है। रात भर उसे भिगो दें और सुबह उसे अपनी मनचाही सब्जियां डालकर बनाया जाए तो स्वाद का स्वाद होता है, पेट भी भर जाता है और पौष्टिक गुण भी सभी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि श्री अन्न खाने के बाद आपको हल्का महसूस होता है, तो श्री अन्न को भी हमें अपनी घर की जो व्यवस्था है खाने पीने की उसमें शामिल करना चाहिए। अलग अलग तरह के नट्स जो हैं, जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं, सूरजमुखी के कहते हैं, और इसके साथ साथ बादाम हैं, अखरोट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश में कुदरत ने इस कदर सब कुछ दिया है, बाहें खोल कर दिया है, छप्पड़ फाड़ कर जिसे कहते हैं वो दिया है, तो हमें हर सीज़न में इतना कुछ खाने को मिलता है कि कई बार तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि इस सीज़न में हमने ये वाला फल तो खाया ही नहीं, ये सब्ज़ी खाई नहीं, इसकी तो बारी आई नहीं। तो हम एक पूरा चार्ट बना सकते हैं पूरे हफ्ते का कि आज हमें ये खाना है, कल ये खाना है, आज ये फल खाना है, शाम को ये खाना है, एक चार्ट बन सकता है। तो इस तरह से अपनी रसोई घर में हम चार्ट बना के रखें। वैसे हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो इन बातों का भरपूर ख्याल रखती हैं, और बच्चे अच्छे से खाएं, टाइम पर खाएं, पौष्टिकता से भरपूर व्यंजन खाएं, खाना खाएं, ये उनकी प्राथमिकता रहती है, तो इसके लिए हम उनको सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपने और अपने परिवार का। पौष्टिकता से कोई समझौता नहीं कि फास्ट फूड ही नहीं बच्चों में डालें पौष्टिक आहार खाने की भी आदत। लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता बढ़ी है, सोशल मीडिया के वजह से बढ़ी है, रेडियो, दूरदर्शन और जो तमाम चैनल्स हैं वो समय समय पर एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं और जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। हमारे अपने प्रोग्राम संजीवनी में जो हर बुधवार को होता है दिन में 11:30 बजे, वहाँ भी समय समय पर डाइटिशियन आते हैं, आयुर्वेद से जुड़े लोग आते हैं, नेचुरोपैथी से जुड़े लोग आते हैं, जो ये बताते हैं कि पौष्टिक खाना ही हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम बातों का हमें ख्याल रखना है और अपने जीवन को, खासतौर से अपने भविष्य को हमें सेहतमंद बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो संडे के दिन तो वैसे भी हमें मौका मिलता है अपना मनचाहा खाने के लिए, वो मनचाहा भी हो सकता है, स्वाद से भरपूर भी हो सकता है और पौष्टिकता से भी लबालब हो सकता है, क्योंकि आज कोई जल्दी नहीं है भागने की, दौड़ने की। संडे इज संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या

तो साथियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर हमने ये टॉपिक चुना कि फास्ट फूड ही नहीं बच्चों में पौष्टिक खाने की भी आदत डालें, क्योंकि 1 से 7 सितंबर तक चल रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी गालिए, अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800-44444।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 14वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में एक भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज आप सुनेंगे इसकी दूसरी कड़ी,
2: जिंदगी नामा, जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
1: दोस्तों, जिंदगी के सफर में एक मोड़ पर हमें सुख मिलता है तो किसी मोड़ पर हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बड़े से बड़े हादसों से भी हम उभर जाते हैं अगर इरादा मजबूत हो, पॉजिटिव सोच हो और बुलंद हौसला हो। एक ऐसे ही भयानक हादसे से उभर कर अपने आप को एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभार चुके हैं जिंदगी नामा प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान। हम बात कर रहे हैं समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू की। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
3: शुक्रिया जी, मेहरबानी।
1: हरमन जी, जिंदगी नामा प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी

0: बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर की थी। उन बातों पर एक नजर डालते हैं और कुछ अंश आपकी जिंदगी से जुड़ी उन बातों के अपने उन सुनने वालों के लिए सुनवाते हैं जो किसी कारणवश प्रोग्राम का पिछला एपिसोड नहीं सुन पाए। तो चलिए पहले पिछले जिंदगीनामा प्रोग्राम के कुछ अंश सुनते हैं।
1: जो व्हीलचेयर है जी, ये पिछले तकरीबन 24 साल से आप कह लो कि मेरी जो दो टांगे हैं उसका रोल प्ले कर रही है, और मेरे को कभी ये नहीं था लगा कि भी मेरे को कभी व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी या इतने लंबे टाइम के लिए ज़रूरत पड़ेगी। हुआ ऐसे था कि मैं उस टाइम 26 साल का था जब मेरा ये सड़क हादसा हुआ था, तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। रेणुका लेक है, एक बहुत सुंदर जगह है हिमाचल में नाहन से आगे, तो हम वहाँ घूमने गए थे और हमारी कार पहाड़ से नीचे गिर गई खाई में, तो जिसकी वजह से मेरे नेक लेवल पे चोट लगी, स्पाइनल इंजरी। और ये जो स्पाइनल इंजरी वर्ड मैं बहुत आराम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को ये नहीं था पता कि मेरे को क्या हुआ है। तो एक सड़क हादसा, जिसको हम हादसा कह के छोड़ देते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी टोटली और व्हीलचेयर पे आने का अहम कारण बना। एक्चुअली जब इस रोड पर हम जा रहे थे तो तकरीबन थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था, और नेचुरली पहाड़ी सड़क है और एक नया एरिया जहाँ हम पहले रात को नहीं ट्रैवल किया था, पहाड़ पे टर्न भी होते हैं। तो मेरा जो दोस्त गाड़ी चला रहा था, तो एक टर्न आया तो एकदम उसने गाड़ी काटी और कुछ सेकंड के लिए आप कह लो कि गाड़ी वहाँ डगमगाई और नीचे गई। तो जो मेन वहाँ का रीज़न था कि सड़क का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द रोड, वो वहाँ से पानी बहने की वजह से टूट गया था, और किसी किस्म का कोई वहाँ वार्निंग मैसेज या साइन नहीं था जिसकी वजह से एक रोड यूज़र को ये पता लग जाए कि यहाँ मेरे को गाड़ी किस तरीके से चलानी है। इस सारे उसमें एक अहम जो आप कह लो एंगल ये था, और दूसरा ये था कि मैं जो कि गाड़ी में पिछली सीट पे बैठा था, उस टाइम पे गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं थी होती, लेकिन जो पीछे पैसेंजर बैठा होता है तो वो नॉर्मली ये सोचता है कि मैं तो गाड़ी चला नहीं रहा तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ, तो हम नॉर्मली बैठे बैठे ऐसे बाजू अपनी गाड़ी के बैक पे रख लेते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपनी बाजू ऐसे रखी हुई थी, और जब गाड़ी नीचे गई एक बार पलटी और उसके बाद सीधी लैंड कर गई, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को कहा कि बाहर निकलो, तो मैं उस टाइम नेक से नीचे कुछ भी महसूस नहीं था कर सकता, और मेरे दोस्तों ने मेरे को बाहर निकाला था गाड़ी से। हमारी किस्मत अच्छी थी, एक ट्रक वाला था, वो अपना लास्ट ट्रिप ख़त्म करके कहीं से वापस आ रहा था, तो उसने हमारी गाड़ी देखी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने गाड़ी रोक कर हमें रास्ता दिया था, तो बड़ी छोटी तंग जगह थी, तो उसने गाड़ी साइड पे लगा के हमें रास्ता दिया, और वही गाड़ी रुकी और उसने हमें हेल्प किया अगली लोकेशन तक जाने के लिए, थैंक्स टू अ ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी गाड़ी रोकी और हमें आगे तक वो लेकर गए। एक बड़ा लंबा टाइम था रिकवरी पीरियड का, तकरीबन 2 साल तो मैं बेड में था, और अचानक जो एक खालीपन महसूस होने लग जाता है कि भाई कहाँ तो आप आज़ाद हो, कहीं भी घूम सकते हो, एंड सडनली एक जो कैद की ज़िंदगी है, आज भी अगर मेरे को एक ऑप्शन हो कि भाई मैं यहाँ जाके ब्रायल जेल रह सकता हूँ या व्हील चेयर पर रहूँगा, तो आई विल प्रेफर द जेल, क्योंकि मैं उसके कैंपस के अंदर तो घूम सकता हूँ। तो ये जो जेल है ये उससे भी बड़ी जेल है, क्योंकि इट्स जस्ट कन्फाइंड टू द चेयर। तो तकरीबन 2 साल तो मैं बेड में था, और जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमें आर्टिफिशियल लाइट दिख रही है, तो इतनी देर तक मैंने छत देखी है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कि ये चीज़ मेरे को बॉदर करती है, जैसे होते हैं ना भी आपको नंबर वन चीज़ क्या है जो डिस्टर्ब करती है, बिकॉज ये मेरे को हॉस्पिटल रिमाइंड करवाती है। और जब 2 साल के बाद मैं व्हील चेयर पर थोड़ा थोड़ा बैठ के घूमने लगा, तो पहली चीज़ जो मेरे को एहसास करने की या टच करने की ज़रूरत फील हुई वो पत्ता था एक, तो बाहर निकल के, बिकॉज नेचर से मैं इतना दूर हो गया था, तो ज़िंदगी भी मेरे को अपनी एक बार ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। तकरीबन 2 साल मैंने पहले बताया था, उससे तकरीबन 1-1.5 साल और इस सिचुएशन में आने के लिए कभी व्हीलचेयर लाइफ के साथ एडजस्ट करना है, और कैसे जो रिमेनिंग आप कह लो कि बॉडी का हिस्सा है, जैसे मैं पार्शली अपने हाथ यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको कैसे यूज़ करना, बच्चे की तरह दोबारा से अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। और उसके बाद जो तकलीफ हमें होती है, हम चाहते हैं कि वही किसी और के साथ ना हो, सो दैट इज़ हाउ प्रॉब्ली जो ह्यूमन इंसान की सोच है शायद ऐसे होती है। और सबसे पहले जो मैंने काम शुरू किया था 2006 में, वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, जो कि उस टाइम पे इंडिया की एक पहली वेबसाइट थी। सो उस टाइम से लेकर आज तक मैं सड़क सुरक्षा और सेफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहा हूँ। 4-5 अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जानलेवा हादसे हो सकते हैं, जिसमें हम स्पीडिंग कहते हैं कि

0: गाड़ी आप तेज चला रहे हो या आप शराब के नशे में या किसी और नशे में गाड़ी चला रहे हो। तीसरा रहता है चलाते हुए मोबाइल यूज कर रहे हो या आपने रेड लाइट जंप की। तो ये चार पांच मेजर लाइफ टेकिंग मसले हैं और इसमें इन सबको कहीं ना कहीं अगर हमने शराब पी रखी है तो नेचुरली हमारे अंदर से वो जो एक एहसास होता है कि भाई थ्रिल की फीलिंग की इच्छा होती है तो बंदा गाड़ी भी तेज चलाता है और फोन पे भी बात करने की उसकी टेंडेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि कुल मिला के जो उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस चीज के बारे में मैं आपको हॉस्पिटल्स के डेटा के बारे में बताऊंगा, चाहे PGI चंडीगढ़ का है चाहे निमहांस हॉस्पिटल है बेंगलोर में। सो उनके हिसाब से 30-50% जो सड़क हादसे हैं उसमें कहीं ना कहीं शराब का रोल है। और अब इस चीज को कैसे रोका जाए, कहने में तो ये होता है कि भाई हम अपना ड्यूटी पूरी कर देते हैं ये कह के कि भाई आप शराब की गाड़ी ना चलाओ, लेकिन अगर आप दिल्ली से ही चंडीगढ़ आ रहे हो तो आपको अगर 1.5 किलोमीटर के बाद औसतन एक ठेका मिले शराब का सड़क के बिल्कुल किनारे पे
1: हाईवे पे,
0: तो अगर आप शौक रखते हैं ड्रिंक करने का तो आप क्या करोगे, कितने ठेकों से बचोगे। तो ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ 1.5 किलोमीटर का, ये एज पर जो RTA इन्फॉर्मेशन सरकारी है उसके हिसाब से है। तो अगर आप 90 की स्पीड पे जा रहे हो तो आप 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में क्लियर करोगे। तो एवरी 1 मिनट आपको एक ठेका दिख रहा है तो आप एक छोड़ोगे 10 छोड़ोगे 20 छोड़ोगे, कहीं ना कहीं आप नहीं रुकोगे, आपका कोई साथी कहेगा कि भी रुक जाओ। तो ग्लोबली जैसे मैं पहले हम बात कर रहे थे कि बाकी कंट्रीज में भी जाने का मौका मिला और उनका सिस्टम ऑब्जर्व करने का टाइम मिला, तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। ये भी प्रोबेबली सिर्फ हमारे देश में ही एक इशू है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हाईवे पे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज़ नॉर्मली कही जाती है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग कि भी आप शराब पी के गाड़ी ना चलाओ, पहले उसकी अवेलेबिलिटी कम होनी चाहिए एंड सेकंड फिर लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई इसके साथ हो क्या सकता है, उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो कुछ हद तक बताया जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ होती है। एंड देन थर्ड कि जो पुलिस की एनफोर्समेंट है वो लास्ट में आती है। तो हमारा जो सिस्टम है जिस तरीके से चल रहा है और अभी जो हुआ है कि भाई चलान उसका 10,000 रुपये कर दिया गया है, लेकिन अगर मैं अगेन दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा हूँ तो चंडीगढ़ पहुँचने से पहले मेरे को पता है मेरे को किसी ने नहीं रुकना, कोई चांस ही नहीं है, स्कोप ही बहुत कम है। तो इस चीज़ के लिए भी जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही 2004, 2007, 2011 में सारी स्टेट्स को कहते रहे हैं कि भाई आप हाईवे से ठेके हटाओ। और उसी चीज़ को लेकर हम कोर्ट में गए थे पहले, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जहाँ का लाइक कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई लिकर वेंट शुड नाइदर बी विजिबल नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम दी हाईवेज। बहुत एक बेसिक चीज़ थी कि भाई ठेके को सीधा रास्ता ना हो सड़क से और वो दिखाई ना दें, लेकिन उस चीज़ को स्टेट्स ने कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ वो केस चलता रहा। 2016 दिसंबर में ऑर्डर आया कि जो ठेके हैं शराब के वो हाईवे से 500 मीटर दूर होने चाहिए, लेकिन इतना आप कह लो कि भी सारे देश में एक तरीके की हलचल हो गई इस चीज़ के साथ कि तकरीबन 5-6 महीने के बाद अगर आप देखोगे तो आज वो ऑर्डर इस सिचुएशन पे है कि सारे ठेके वापस हाईवे पे उसी जगह पे हैं रोड के किनारे पे। तो इस चीज़ को लेके अभी भी एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक एक्ट है मिनिस्ट्री का ही, तो उसकी कंप्लायंस के लिए हम इस चीज़ के लिए कोर्ट में अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में अंडर प्रोसेस है।
1: हरमन जी ये तो थे आपकी जिंदगी से जुड़ी उन बातों के अंश जो आपने जिंदगी नामा प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में हमारे साथ शेयर की थी कि किस तरह से आप पहाड़ की सैर पर निकले, कैसे अचानक आपकी कार खाई में गिर गई, कैसे उस भयानक हादसे ने आपकी जिंदगी बदल दी और किस तरह से आपने अपने आप को उस भयानक हादसे से उभार कर एक मजबूत शख्सियत बनाया और सड़क हादसों के खिलाफ जंग शुरू की। आपने माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हाईवे से शराब के ठेके हटाने के लिए PIL डाली और सड़क हादसों के खिलाफ आपकी ये जंग आज भी जारी है। सिद्धू साहब आप बता रहे थे कि किस तरह से आपका संघर्ष चल रहा है कि हाईवे से शराब के ठेके हैं वो हटवाए जाएं, तो इसके अलावा आप क्या सोचते हैं किस तरह से आप हादसों को रोक सकते हैं और किस तरह से आप काम कर रहे हैं?
0: एजुकेशन और अवेयरनेस की जो अगर हम बात करें तो गवर्नर साहब ने जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी है उन्होंने हमारी एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है चंडीगढ़ रोड सेफ्टी मैनुअल
1: जी।
0: तो इसमें हमने पूरी डिटेल के साथ ये समझाने की एफर्ट की है कि भाई सड़क पे जो डूज एंड डोंट्स हैं कि किस कंडीशन में हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम पेडेस्ट्रियन होते हैं, पदयात्री होते हैं, तो जब पैदल चलना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद जब हम

0: गाड़ी में, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, अगर उसमें हम सवार होते हैं तो हर बार चलने से पहले हमने क्या चेक करना क्या नहीं करना, एंड देन अगर हम रोड पे चल रहे हैं किस बात का कैसे ध्यान रखना और क्यों रखना। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड तरीके के साथ, तकरीबन 200 पेजेस की एक बुक है। 200 पेजेस इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं
1: जी,
0: इसको देख के हम एकदम से समझ सकते हैं कि भाई क्या बताया जा रहा है। तो उस चीज को आज गवर्नर साहब ने रिलीज किया है और वो इंडिया की पहली ऐसी बुक होगी जो लाइसेंस लेने से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बेस पे एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये अपने आप में एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कंट्रीज जो हमारे से ज्यादा डेवलप्ड हैं उनका जो ट्रैफिक सिस्टम है, नियम फॉलो करने की लोगों की जो आदत है वो हमारे से बेटर है, बिकॉज उनको पता बताया गया है कि भाई ये आपने क्यों करना है। कभी कभी ये बताया जाता है कि भाई आप हॉर्न ना बजाओ, लेकिन क्यों ना बजाओ इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। उसमें हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और ये चीज़ बहुत जल्दी ऑफिशियल तौर पे लोगों तक आएगी, और ना सिर्फ जो नए लाइसेंस लेने वाले हैं जिसके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस भी है वो भी इस चीज को पढ़ के अपना लेवल ऑफ नॉलेज इम्प्रूव कर सकेंगे।
1: जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपने ये किताब लिखी है कि सड़क के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है, और हरमन सिद्धू जी एक आम व्यक्ति जो है वो किस तरह से योगदान दे सकता है कि एक्सीडेंट को बचाया जा सके।
0: सबसे पहले जो कहते हैं बचाव में ही बचाव है, अगर हम स्पीडिंग की ही बात करें कितनी रफ्तार पे चलाना, हमें अपना बॉडी बताती है, गाड़ी बताती है, उसके इंजन की आवाज बताती है, गाड़ी हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो उस चीज को समझना, उसका एहसास है जो उसको फील करना, तो ये चीजें जो हैं ये हमें समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल थिंग। भी सिमिलरली अगर हमने रोड क्रॉस करनी है तो ये ज़रूरी है कि भी हम दाएं बाएं देखेंगे, कमरे से ही बाहर निकलता उस टाइम भी हम देखते हैं, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। इसको फॉलो करना और ये सोचना कि भी ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती, ये गलत रहेगा, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि हम ये रूल्स को फॉलो करें। और इसका एक इम्पैक्ट जो हमारे सारे देश पे पड़ेगा कि अगर हम सड़क पे डिसिप्लिन चलेंगे तो हम बाकी जगहों पे रूल्स को किसी ना किसी तरीके से फॉलो करेंगे, और इसके साथ वील कम अप एज ए बेटर एंड ए स्ट्रॉन्गर कंट्री।
1: कुल मिला के पूरा डिसिप्लिन और थोड़ा सा सब्र अगर रखें सड़क के ऊपर तो हम लोग हादसों को बचा सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात।
1: सिद्धू साहब, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, जब ये हादसा हुआ आपके साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद आपने उभर कर फिर से नई जिंदगी शुरू की, तो इससे पहले आप क्या करते थे, किस तरह से अपना गुजारा करते थे?
0: देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है या बताने के लिए कि भाई मेरी उस टाइम एज 26 थी। अगर ये हादसा ना होता तो हफ्ते के बाद मैं एज इमिग्रेंट कनाडा जा रहा था। मैंने बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और ये जो लाइन है मेरी टोटली उस दिन के बाद ज़ीरो हो गई, क्योंकि इस लाइन में आपको चलकर कहीं जाना पड़ता है या प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है, विच आई कैन नॉट डू। तो अगर ये हादसा ना हुआ होता तो मैं उस लाइन में काम कर रहा होता, और इसके बाद 2 साल बेड में, एंड उसके बाद अपने आप को रीस्टार्ट करने वाली बात, और फिर 1999 और 2000 के दौर में एकदम से जो एक चेंज आई वो थी इंटरनेट की
1: जी।
0: तो जो इंटरनेट आया उसने मेरे लिए एक नई दुनिया खोली, और मैंने फिर कंप्यूटर पे टाइम पास करना शुरू किया, अभी थोड़ी गेम गुम खेलो, सारा दिन फ्री बैठना। तो उसके साथ मैंने उसके वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये चीज़ें अपने आप घर बैठ के सीखी, बिकॉज बाहर निकल कर व्हीलचेयर पे जाना उस टाइम भी एक चैलेंज था और आज भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। तो वो चीज़ करके धीरे धीरे मैंने इसीलिए ये चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट बनाई, और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ या और डिपार्टमेंट्स के लिए काफ़ी और प्रोजेक्ट्स भी किए जो अभी भी यूज़ हो रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन अब मेरा जो फोकस है वो टोटली इस टॉपिक यानी कि सड़क सुरक्षा और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन इसमें यह है कि भाई हम जब सड़क पे निकलते हैं हमारे दिमाग में कार आती है सबसे पहले, जबकि कार लास्ट में होनी चाहिए प्रायोरिटी में।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम शहरी माहौल की बात करें
1: जी,
0: तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलने का जो माहौल है कि वो कैसे सेफ किया जाए, उस चीज पे काम कर रहे हैं।
1: यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: एक बहुत अच्छी मूवी आई थी लगान, और उसका गाना मितवा
1: जी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का लगान फिल्म का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है FM 107.2 न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in के लाइव स्ट्रीमिंग पर। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का प्रोग्राम जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने आप को मजबूत रखा और एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आए, समाज सेवक हैं श्री हरमन सिद्धू। सिद्धू साहब, जब ये हादसा हुआ तब माता पिता के ऊपर किस तरह बीती?
1: हाँ, ये एक बड़ी अहम बात तो है ही, लेकिन जो पेरेंट्स की एक सोच होती है, जो मैं समझता हूँ कि वो उनके चेहरे पे आपको कभी नहीं पता लगेगा कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज अगर वो मेरे सामने वीक दिखेंगे तो शायद उनको लगेगा कि मैं उनके वीकनेस से मैं वीक हो रहा हूँ। तो ऑल द टाइम पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर और मेरे कुछ दोस्त, जिनको मैं उस टाइम भी दोस्त कहता था, अब भी कहता हूँ। नॉर्मली हम कहते हैं मेरे 100 दोस्त हैं, लेकिन वो गलत होता है, थोड़े से ही होते हैं। तो पहले भी थे, अब भी हैं वही लोग। तो वो जो एक आप कह लो कि कोर ग्रुप है जो फैमिली का और फ्रेंड्स का, तो उनका एक बहुत अहम रोल रहा और अभी भी है।
0: खास तौर पर अगर माँ बाप की बात करें तो उनका कितना रोल रहा इस हादसे से उभारने में आपको?
1: बहुत अहम रोल, मतलब आप कह लो कि भी अगर 100% की बात करें तो 100% में से 100%, क्योंकि ये तो हम बात करें भी 24 साल हो गए, इसको एक साल पे ले आओ, उसके बाद एक महीने पे ले आओ, फिर हर घंटे पे ले आओ, तो हर एक पल आपने पॉजिटिव कैसे रहना, उसके लिए जो उनकी एक नॉन स्टॉप एफर्ट है, सो वो सबसे अहम चीज है।
0: क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल पल होते हैं ऐसे।
1: बिल्कुल होते हैं जी। शायद उनमें इतनी शक्ति थी कि उनकी जो ये पावर है वो मेरे में किसी तरीके से ट्रांसफर हो रही है कि भी मैं इस चीज पे काम कर सक रहा हूँ, तो अगर उनमें ये ताकत ना होती तो मैं ये चीज नहीं कर सकता
0: जी। सिद्धू साहब, चंडीगढ़ पुलिस के साथ जुड़ने का ये जो सिलसिला था वो कब शुरू हुआ, कब आपने सोचा कि चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलके ये काम किया जाए?
1: ये भी एक इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल बात थी कि ये तो मैं सोचता था कि भाई सड़क हादसे कम करने के लिए क्या किया जाए, और मेरे दिमाग में उस टाइम भी जितनी लिमिटेड नॉलेज होती है, तो मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं चंडीगढ़ से व्हीलचेयर पे शिमला जाऊंगा व्हीलचेयर चला के। लेकिन अब मेरे को ये तो एहसास नहीं था या ख्याल नहीं था कि भी उसके साथ मैं कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूंगा या उसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। तो उस टाइम मेरे को, जैसे मैंने पहले बताया कि मिस्टर अमिताभ सिंह ढिल्लों थे यहाँ SSP ट्रैफिक, उनसे मिलने का एक मौका मिला, तो उस टाइम मैंने ये बात शेयर की, इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर एंड ए पर्सन, तो मैं उनको बताया कि भाई ये मेरी दिक्कत है और मैं ये सोच रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इस तरीके से आप कितने लोगों तक पहुँच सकोगे, तो बेटर है कि भाई हम इस तरीके से काम करें ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उसका एक बेटर इम्पैक्ट हो
0: जी। तभी आपने फिर वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट डिज़ाइन की।
1: हाँ जी, तो उसकी जो शुरुआत थी वो उसी मुलाकात के साथ हुई थी
0: जी। सिद्धू साहब, आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनको?
1: फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आप जब भी सड़क पे निकलो मेक श्योर दैट यू ड्राइव सेफ, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप एक पैसेंजर हो, तो जब आप इस सफर पे निकले हो, चाहे अपने शहर के अंदर, गांव के अंदर या मेन रोड के ऊपर, तो ये ना सोचे हो कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती, कभी भी किसी के साथ ये दुर्घटना हो सकती है, और इसको कंट्रोल करने में हम सबका एक अहम योगदान है। हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ भी करूँ, तो अगर उन पे हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, तो हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सिस्टम के लिए

0: एक रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर बने। और ये डेफिनेटली सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की जो बात है तो ये यहीं से स्टार्ट होती है कि भी मुझे क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि भी मुझे क्या करना चाहिए। वो जो मैंने किताब की बात की, रोड सेफ्टी मैनुअल, उसको पढ़ें। और हमारी जो वेबसाइट है arrivesafe.org, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है लोगों तक पहुँचने की और उनको इन्फॉर्मेशन देने की कि भी क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और जाते हुए मैं आप सबसे एक अपील करने चाहता हूँ कि अगर सड़क पे चलते हुए आपको कहीं कोई हादसा दिखता है और उसमें आपको पता लगता है कि भाई किसी को कोई चोट लगी है, तो उसको छोड़ के ना भागें, रुकें और जितनी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। जैसे एक उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी की थी, उसको कभी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई बंदा उसको कितना याद कर रहा है इतने सालों के बाद। तो सिमिलरली अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी। तो ज़रूर जो इनिशियल कुछ मिनट होते हैं, चाहे वो 3 मिनट हैं, आधा घंटा है, 1 घंटा है, वो जो इंसान की लाइफ है उसको टोटली चेंज कर सकता है। तो अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल मोमेंट, तो उसे भागे ना, रुकें और मदद करें।
1: जी हरमन सिद्धू जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे सुनने वालों के साथ हमारे साथ शेयर की, वो ज़रूर इन पर अमल करेंगे। हरमन सिद्धू जी, आप जिंदगीनामा प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया जी, थैंक यू।
1: दोस्तों, आज यादों का कारवां में आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में एक भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। अभी आप सुन रहे थे हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां, FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भत्ते पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं, उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
4: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
5: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
6: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म यादों की बारात का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, सुरों से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

कभी हमने नहीं।

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: अच्छा कौन है।
1: आइए सुनते हैं फिल्म शराबी का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीतकार हैं अनजान और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अगला गीत है फिल्म शक्ति से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अब बारी है फिल्म शागिर्द के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, बोल दिए हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों

0: की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। यह कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से आज राकेश रोशन का जन्मदिन है। उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, धुन है राजेश रोशन की। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है खेल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सुनेंगे हम नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र वर्मा की, संगीतकार है विजय बटालवीकर, फिल्म का नाम है बहू की आवाज।

0: यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है ढोंगी।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल हैं इंदीवर के, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खुदगर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।

0: बजता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 1:15 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, फिर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:15 पर। दोपहर 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफ़र।

कार्यक्रम त्रिवेणी का समय रहेगा दिन में 2 बजे। दोपहर 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 3 बजे।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में दोपहर 3:30 पर सुनिए नाटिका आँख की किरकिरी का भाग दो। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इसमें आप सुनेंगे नाट्य निर्देशक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4।

शाम सुहानी कार्यक्रम में शाम 5:30 पर सुनिए वरिष्ठ नागरिक श्री जगदीप सिंह जी से उनके प्रेरणादायक कहानी उनकी जुबानी। अमृतवाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:30।

शाम 7 बजे पेश होगा कार्यक्रम विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। मैं सुनिए महावीर चक्र विजेता नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा। पंजाबी गीत आप सुन सकते हैं रात 7:47 पर और सुर सांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर।

चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर और रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेता राकेश रोशन पर केंद्रित रहेगा। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से नशे के विरुद्ध आयोजित हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिले के लाखों युवाओं ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशे से बचाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के लोगों को नशा मुक्ति के संकल्प के लिए किए गए इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।
2: रेवाड़ी ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, नशे से जंग रेवाड़ी के संग। मैराथन में आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। रेवाड़ी ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करने का संकल्प ले लिया है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं विशेष तौर से जिला प्रशासन, खेल विभाग, सामाजिक संगठनों और प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों तथा विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारी लाखों की संख्या में युवा शक्ति को शुभकामनाएं देता हूँ।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा, खेल युक्त हरियाणा और शिक्षित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हर महीने किसी न किसी जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेल और शिक्षा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। वर्ष 2014 के बाद से नशे के विरुद्ध अभियान को तेज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उत्तर पूर्व छात्र उत्सव के 9वें संस्करण के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में भारी संख्या में पूर्वोत्तर के युवा रोजगार कर रहे हैं और हरियाणा सरकार उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कृत्रिम मेधा का जिक्र करते हुए तकनीक को अपना साथी बनाने को कहा।
2: क्या AI मेरी नौकरी ले लेगी? AI को लेकर के सवाल पूछा जाता है, मैं कहता हूँ सवाल बदलिए, मैं AI के साथ मिलकर के क्या कर सकता हूँ जो मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। साथियों, टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए, नई स्किल सीखिए, लेकिन याद रखिए टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाइए, परंतु अपनी इंसानियत को कभी आउटसोर्स मत कीजिएगा।
1: केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल स्वच्छता ही सेवा 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए वर्चुअल माध्यम से जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंतर मंत्रालयी बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि जैसे ही ये अभियान अपने 9वें संस्करण में प्रवेश कर रहा है, देश एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहरा रहा है। उन्होंने नागरिकों से आगे आने, पूरे दिल से अभियान में भाग लेने और स्वच्छता ही सेवा को एक सच्चा जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। काबिले गौर है कि स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान इस महीने की

17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के सफल आयोजन के लिए कल चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी 23 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और हरियाणा की प्रमुख विकास परियोजनाओं की पहचान करें और अभियान के दौरान इन जगहों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करें। 17 सितंबर की शाम को लाभार्थियों और आम जनता के घर में जाकर राज्य के हर बूथ पर आशीर्वाद का दिया जलाने के निर्देश भी दिए गए। श्री नायब सिंह ने विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित करने को भी कहा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में किए गए विकास और कल्याणकारी कार्यों और इनसे लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में आम लोगों को बताया जा सके। हरियाणा सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
1: अब बारी है फिल्म दूसरा आदमी से इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और सुरों से सजाया है राकेश रोशन ने।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और अंत में सुनते हैं फिल्म खेल खेल मैं का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं आशा भोंसले और किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
4: अरोड़ा प्लाईवुड
5: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ज़्यादातर शूटिंग ऊटी, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक और उत्तराखंड के रानीखेत में हुई और टैक्सी ड्राइवर राजा एक काल्पनिक इलाके पालनखेत में अपनी टैक्सी चलाते थे। आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर, कुणाल खेमू, अर्चना, पूरन सिंह, मोनिश बहल, टीकू तलसानिया, फरीदा जलाल, नवनीत निशान और वीरू कृष्णन इस फिल्म में नजर आए थे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भूटान में जब मैं गया था तब गर्मी का मौसम था, फिर भी गर्मी में बहुत ही मज़ा उठाया हम लोगों ने। अगला ये मैसेज है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते

ते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सफर में गाए जाने वाले गीत एक दो नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिचय में मुसाफिर हूँ यारो। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र का ये सफ़र सचमुच बहुत ही रोमांचक सफ़र है, जिसमें हम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं। साथियों, सड़क पर तो हम सभी रोज़ चलते हैं, गुजरते हैं, पर एक बेहद चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त ने रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर

का नाम भी लिखकर भेजें। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम और सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नजर आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों, आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नज़र आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज़ उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज़, उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाज़ें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और गदर। एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपंप उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मज़ेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफ़र में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली, अरे बढ़कर चली, जो सफ़र प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफ़र, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफ़र, और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नज़र आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के ज़रिए वो सफ़र करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई ख़ास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाज़ें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं AR रहमान।

साथियों, आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है, भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी, जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का, इस फिल्म का गीत, और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नज़र आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफ़र के हम सफ़र बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

त्रिवेणी तट पर मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह सभी को नमस्कार। दोस्तों, जीवन में खुशियां आसपास बिखरी होती हैं, हम खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आज छोटी छोटी बातों में तलाश करें खुशी का खजाना। सुबह सुबह जब चिड़िया मुंडेर पर बैठकर फुदकती है, जब आकाश में चिड़ियों का समूह सैर पर निकलता है, जब नदी के शीतल पानी को स्पर्श कर माथे से हम लगाते हैं, जब अदरक वाली खुशबूदार चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह रेडियो ट्यून करते हैं और रेडियो की सुई विविध भारती पर ठहरा देते हैं, तब होती है असली खुशी। तो चलिए आज रेडियो के साथ खुशी मनाते हैं।

दोस्तों, किसी विशेष तिथि पर जब हम जश्न मनाते हैं तब खुशी में डूब जाते हैं। जश्न के इंतजार में जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है। खुशी हमें मिल जाती है।

0: है किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर हम खुश हो लेते हैं, किसी की आवाज़ सुनकर हमारा दिन बन जाता है, कोई अपने पसंद का सुनहरा गीत सुनकर हम होठों पर मुस्कान सजा लेते हैं, खुशी से तरबतर हो सकते हैं। आइए आज दिन भर नहीं, शाम को रात तक बीने खुशियों की सीपियाँ।
1: इतनी सी

दोस्तों, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो लोगों की छोटी मोटी चालाकियों, धूर्तताओं पर धूल डालकर आगे बढ़ जाएं और देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा है, गुणी है। गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर भी हम खुशी पा लेते हैं। किसी उत्सव, पर्व, त्योहार पर हम खुश हो लेते हैं। कुछ उत्सव आपको सिर्फ एक तिथि की याद नहीं दिलाते, बल्कि आपको खुशियों की टोकरी सौंप देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ आपका मन समृद्ध कर देती हैं। हमारे चारों तरफ खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं, जरूरत है उन्हें चुनकर सहेजने की, संवारने की। छोटे से बच्चे की किलकारी आपको खुशी से भर देती है। मासूम बच्चे को हंसाकर हम पाते हैं खुशी। कोई गीत गुनगुनाकर हम पा लेते हैं खुशी। तो चलिए गुनगुनाएं और बांटे सबको ढेर सारी खुशी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम

0: श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द

0: ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुगरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIR News Hindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
3: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों

0: हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
3: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
4: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
1: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उपमहापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के 5वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई।

कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में। गीतकार हैं गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन है राहुल देव बर्मन के, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है स्वामी।

0: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
1: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
2: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके पत्र, आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइशें भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शुभम दयाल खटक, चार कोप कांदिवली वेस्ट मुंबई से अनिल कुमार वैद्य, गांव पालधी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पाटिल, नरेंद्र पाटिल, शेखर पाटिल, चेतना पाटिल, मानसी पाटिल, किरण पाटिल और शैला बाई पाटिल, कृष्णा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, अलीना जुनैद, रजिया मुआज और आयात मंसूरी, और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदडाने, अर्चना प्रतिभा ताई और पद्माकर गोंदडाने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जांबाज़।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी ख़त लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। राजनगर कांति निकेतन मधुबनी बिहार से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता ने, कुंवर कॉलोनी एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा, खामगांव जिला बुल्डाना से करीम शाह, गणेश गरड़, शेख मोहसिन, लक्ष्मण उपासे, गोपाल काड़े और राम बाड़खे ने।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित नीशू और

उपेंद्र, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। मालेगांव ज़िला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर।

रण पिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती, कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान, बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री भूमि, नितिन तनिष, मुकेश, दीपिका, लविसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधीराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजी नगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आँखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो। और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति ही नहीं तुम में।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूँ।
1: लाला जी, मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना? यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो। लाला जी,
2: हट जाओ मेरे सामने से।
3: अरे, तुम्हारे बाएं हाथ की कोने से खून बह रहा है। ला, फिर मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांध कर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने तो, मुझे अच्छा नहीं कराना है।
2: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगा कर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
4: और तुम कैसे रहे?
2: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
4: आज इतनी जल्दी?
2: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोदनी की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है।

0: और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन लेकिन विनोद भी मुझसे दूर नहीं। नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा। चलिए उसे कमरे में।
1: विनोद, विनोद बिस्तर बिछा है, विनोद ने कहा है?
2: कौन?
0: मैं हूं, मैं।
3: अरे महेन, इतनी रात को तू यहां कैसे? महेन, विनोदिनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात के यहाँ क्या करने आया था?
2: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
4: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? चिट्ठी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़ कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेली बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
2: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी।

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, माँ, माँ, जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बात भी है ऐसी है, उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहाँ, आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू, तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुण दोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तू माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है

0: उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो, ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
2: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी, ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ यहां से।

0: तो फिर निभाना। फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
1: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी, ठगना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
1: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
2: अरे भाभी, आप कैसे?
0: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
2: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सो देश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
2: तुम्हें क्या कहके वहां ले चलूंगा?
0: दासी कहके। मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
2: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
2: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
2: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने। अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर चलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
2: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है। अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, एक तुम्हें मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है, पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो। शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
2: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझ नहीं लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगे, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे, तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा, मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
2: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
2: आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
2: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
0: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
2: तुम।
0: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं। धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
2: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं,

0: और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अभूत बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
1: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
0: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनानी डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
1: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
0: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं।
1: बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना। किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
0: विनोद, मैं
1: जीवन सर्वस्व जानती हूँ कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
0: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
1: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूँ। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
0: आ गया विनोद।
1: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
0: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
1: चलो, मैं चलती हूं।
2: माँ,
3: माँ, लालची जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
2: माँ, प्रणाम माँ।
4: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
2: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
4: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं,
2: माँ
4: तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
2: माँ,
4: मुझे बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू लिया मछली बहू।
5: हाँ, हाँ जी जी।

0: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
1: न्यारी, जरा बाहर तो आ।
2: कहो काकी।
1: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदरी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
2: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
3: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछोना, सब तो फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछोना जी चाहता है।
4: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछोने पर मत बैठना।
3: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
4: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
3: कौन है वो बिहारी?
4: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
3: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
4: हाँ, उन्हीं के लिए।
3: उसका पता ठिकाना जानती हो?
4: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
3: मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा।
4: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकोगे।
3: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
4: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
3: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
4: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
3: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
4: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओह, तुम नहीं मानोगे, क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम?
2: महेंद्र, महेंद्र।
4: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ।
4: तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
2: कहो, क्या कहना है?
4: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
2: लो, बैठ गया।
4: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने गांव से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
2: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
4: अच्छा, अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
2: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
4: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
2: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
5: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
2: ठीक है, मैं जाता हूं।
4: सुनो,

0: ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
1: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूं।
0: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
1: नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ न चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
1: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करो ये कभी नहीं होगा।
1: किंतु विनोदी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।
1: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
0: जी जी
1: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
0: तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
1: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
0: भूल गए लाला जी, ये देखो।
1: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान?
0: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी। उस खाब का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
1: भाभी,
0: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था सैया जी, और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सैया जी जोगत्या था, तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की, पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके।
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है, और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है ये दो तीन चार नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल में रुत्वी का जन्म हुआ, तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में दो बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी, तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर। पर उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो दि गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्सअप नाम के नाटक में काम किया, जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो एक उंठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ लाइफलाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया, गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया, फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी,
2: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया, और खास उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-3.5-4 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका, और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी, और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे, और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए
1: लीजिए।
2: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने दोनों ने भी यह तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही है। और

0: उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में,
1: जी
0: सी इज
1: बहुत
0: वन
1: बड़ा
0: ऑफ द
1: योगदान
0: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है। और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ, उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और दो तीन सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज़्यादा कंचन सोनटक्के जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है।
1: जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।
2: मैंने कहा।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था, और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही, और दूसरा दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था,
0: जी
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया। लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया

0: था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबे पन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
1: हमेशा हाशिए पर
0: हमेशा
1: जो लोग हैं
0: हाँ,
1: वो
0: हसीये पे जो लोग है, जो गांव के बाहर है, गांव के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री नहीं है। अब देखिए झुलवा जोगते जोगतीनी पर है, एक झुंझ वारियासी, एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना, जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है, क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित।
1: आइडेंटिटी
0: उसके
1: क्राइसिस
0: बाद
1: है।
0: जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे, और दूसरा विनय आपटे करते थे, और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था।
1: जी
0: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, इस तरीके का विषय था।
1: जी
0: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के
1: किन्नरों पर
0: जीवन पे
1: था।
0: विषय था, उसका लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के, और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं, ती फुलराणी तक, रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में, संस्कार में, उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे हैं, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ, और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था,
1: जी
0: और जिसके 700 750 शो, मतलब दैट वाज सपोज्ड टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था, उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
1: वाह,
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
1: क्या बात है।
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे ही नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजाओं को बेच दी थी।
1: जी
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था, और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हैं हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉर।

0: फेयर प्लेड बाय मराठास हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था, वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे, मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फूलरानी आया,
0: उसके बाद ती फूलरानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया। जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी। मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है।
1: जी जी जी,
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है, वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है, बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
1: वाह,
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो,
0: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी।
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हो हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं। मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए।
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है, मेहनत।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढहाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाए तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में, कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी। ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नहीं तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग है जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब 3 भाषाएं हो गई,
0: अब 3 भाषाएं

0: हो गई। तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके तीन अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम, भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके, चार भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया, और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी,
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन के नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें, इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, एनएसडी के दोनों अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था, कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्युमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना, दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें 2 अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक, जब तक उसको 2 आदमी उठा के पकड़ के ले जाते, तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे 2 अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्युमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके, उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्युमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम एनएसडी के एल्युमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया, और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारंत स्मृति पुरस्कार
1: जी,
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी, और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारंत पुरस्कार, वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: और गुरु,
0: हाँ हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार, तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात है।
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है,
1: सीनियर वाला,
0: वो मैं पहला एल्युमिनाई हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारंत स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया, एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां हुआ।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी,
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मानपूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा, पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहाँ की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता कर

0: करना, जितनी भी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीज़ों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है,
1: जी
0: वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या, जो मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिज़ाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था, वो डिज़ाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे, तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना। डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिज़ाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है, तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिज़ाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है, तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया। फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है, उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमी एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को यह ना लगे कि यह हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे अमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहां कंसीडर करने के लायक नहीं है, तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो, कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है।
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई, बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी,
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बन

0: जाएं तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें। और फिर वो शुरू किया, पहला वो

0: किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की, तो जो पहले ओलंपिक होता था, जो स्पोर्ट्स का है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था। पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार, हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें। और फिर वो शुरू किया, पहला वो ग्रीस में हुआ, और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया, और आठवां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा, तो उनकी परमिशन ले ली और आठवां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो, इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये दो चार जगह देखा, और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया, और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो आठवां थिएटर ओलंपिक्स हो गया, जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक, और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए, उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो,
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए, और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य,
0: बहुत बहुत हो गया, ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे, हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया, जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए, लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए, और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है, और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री, मुंबई विश्वविद्यालय में नाटक का विभाग हो, इसके लिए इतनी कमेटियाँ हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने अकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4th महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है। तो मैंने मना, मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई, और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर, उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो, और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं, और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार, इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट

0: वो करते हैं वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
1: जो दो तीन साल सोचा था
0: और रात दिन मैं सुबह 7:45 पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
1: अरे बाप रे।
0: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए, तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में ही जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी।
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एमएस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी हिंदी अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था, फिर ईडीपस किया 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह।
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव
1: जी,
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होकर लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने, और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह।
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था, तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यही बनाया हुआ था
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था।
1: जी जी।
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया, और अभी तक मैं जब तक था मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी।
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था, कोई नॉर्वे से आ रहा है एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: वाह वाह।
0: मतलब ऐसा नहीं है कोई से भी, कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे, और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने हैं, आपकी

0: धारा को।
1: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहां पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको थाड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो। मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए।
0: जी जी,
1: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
0: जी जी जी,
1: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
0: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं, और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
0: जी जी,
1: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया, पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है, और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
0: जी,
1: और वो मराठी सिनेमा है, और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है, और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
0: जी,
1: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है, और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
0: अच्छा क्या बात है,
1: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विद सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
0: जी,
1: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
0: जी,
1: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
0: जी,
1: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
0: हर तरह की सिनेमा,
1: हर तरह का सिनेमा देख।
0: जी, वामन केंद्र जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा, और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
1: जी जी जी,
0: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का 4th और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।
4: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
6: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर

0: भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना ही सच्चा सशक्तिकरण है। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1.19 करोड़ किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडप में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। कोयला मंत्रालय ने पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन का कारण केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब के बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया गया है। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज 4 मंजिला इमारत ढह गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की गई हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: प्रस्तुत है फिल्म संगीत, आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म गीता मेरा नाम से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यार।

अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनामिका से, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने,

और अब अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म चुपके चुपके से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोज

सीखने के बारे में है, जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार है। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन खुशहाल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए, इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखे। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद ले, इसके लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं। इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें, इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है, इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है, इससे कई बार डिप्रेशन

के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकाले। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए। कई परिवार के साथ घूमें और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी।
1: शाम सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच के बल पर उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं श्री जगदीप सिंह जी की, जो एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ नए विचारों, सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने में विश्वास रखने वाली शख्सियत हैं। इन्होंने अपने व्यवसायिक सफर में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें अवसरों में बदलने का प्रयास किया है। जगदीप सिंह जी की कार्यशैली में मेहनत, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जगदीप सिंह जी एक सच्चे देशभक्त हैं। आपकी जिंदगी का सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को व्यवसाय और नवाचार के माध्यम से साकार करना चाहते हैं। इनके लिए हम यही कहेंगे कि इरादे बुलंद हों तो राहें आसान हो जाती हैं, इरादे बुलंद हों तो राहें आसान हो जाती हैं, मेहनत और लगन से पहचान खास हो जाती है। जो अपने हुनर से सफलता की नई मिसाल कायम करें, ऐसी शख्सियत की हर बात प्रेरणा बन जाती है। तो जगदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम सुहानी कार्यक्रम में।
2: थैंक यू रमेश कपूर जी, ये ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात हो गई, क्योंकि मैं पिछले 20 साल मैंने काफी ट्रेवल किया और आपकी आवाज तो ऐसे लगता था कि कोई हमारे घर वाले इंसान बोल रहे हैं, और आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर विद यू, और ये एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए।
1: जगदीप सिंह जी, जब आप जैसी शख्सियत इस कार्यक्रम में आती हैं तो वो हमारे लिए भी सपने साकार होने जैसा ही होता है। सेल्फ मेड मैन जब हमारे सामने आते हैं, हमसे बात करते हैं, अपने जीवन संघर्ष की कहानी जो है वो हमारे सुनने वालों तक पहुंचाते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है।
3: आपकी जिंदगी के सफर की शुरुआत हम करते हैं आपके बचपन से। तो आपके

0: माता पिता कहाँ रहते थे और आपका बचपन कैसे बीता?
1: इससे पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करनी चाहूंगा, वो मेरी जिंदगी का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेरे ना फादर और मदर दोनों दिल्ली में, दे वर वेल सेटल्ड। ये 60 में इनका मैरिज हुआ, 1960 में। माय फादर वाज एन इंजीनियर इन CPWD। मदर वहीं पे, मेरे मदर पढ़े लिखे थे, BA/BEd थे। उन दिनों में काफी कम लोग होते थे जो ग्रेजुएट के साथ BEd होते थे। तो इन दोनों की लाइफ वाज एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। तो मेरा 61 में बर्थ हुआ, तो 10 जनवरी 1963 को माई मदर वॉज वेटिंग फॉर माई फादर टू बी बैक। He was 28 years old, तो उनका स्कूटर स्किड कर गया एंड वहीं पे ब्रेन हेमरेज हो गया एंड ही एक्सपायर्ड। तो सारी दुनिया हमारी वहीं से चेंज हो गई। मैं तो माँ की गोद में था, तो 26 साल की लेडी, उसके लिए तो जिंदगी बिल्कुल ही, और देन काफी एकदम से अनहोनी जो होती, इससे कुछ भी भगवान की यही इच्छा थी उस टाइम। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां से जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस टाइम आपके अपने पराए सब पता चलने शुरू होते हैं। तो मेरी नानी यहाँ पे पार्टीशन के बाद में, क्योंकि पहले तो वो उधर रावलपिंडी से थे, पार्टीशन के बाद में शी वाज आल्सो एजुकेटेड, वो लाहौर कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो वो फगवाड़ा में एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, वेरी रिनाउंड टीचर, बीबी आतम कौर जी फगवाड़ा में। अब तो खैर हम लोग तो उनका नाम देके अभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि अभी तो उनको गुजरे हुए भी 50 साल हो गए, इतने रिनाउंड टीचर थे, उन्होंने कई लोगों के कैरियर बनाए थे। तो उस टाइम मेरी माँ का तो सहारा उनकी माँ थी, तो शी ब्रॉट अस टू फगवाड़ा। उसके बाद में देखिए जब आती है ना, तो 4 महीने बाद 1 जून को, 10 जनवरी को मेरे फादर की डेथ होती है, 1 जून को मेरी बहन पैदा हो जाती है। तो 2 बच्चे, देन नेचुरली टीचर की सैलरीज इतनी होती है, तो माय नानी वाज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, तो एकदम से सारी दुनिया मेरी माँ की बदल गई। तो बट यहाँ पे पढ़े लिखे होने के कारण इनको सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। बट देखिए क्या होता है कि जब चैलेंज आते कैसे आते हैं, उसका एक था कि भी आपने 21 दिन में जॉब ज्वाइन करना है। तो फिर माई मदर छोटी बेबी थी, तो मेरी मदर ने जॉब ज्वाइन किया। तो ये चैलेंजेस हुए, उन्होंने स्कूल जाना होता था, नानी जी को भी स्कूल जाना होता था। तो 2.5 साल की उम्र में नजदीक एक प्राइवेट स्कूल था, उस वहां पे मेरे को पढ़ने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो ये स्ट्रगल शुरू हो गया। बट एक चीज बताओ, मेरी नानी का अभी भी मेरे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है, दाउ शी पास्ड अवे इन 76, 15 साल उनके इन्फ्लुएंस में मैं रहा हूं। उन्होंने हमें वैल्यू सिस्टम इतना बढ़िया दिया है, डिसिप्लिन उन्होंने नंबर 1, 4 बजे उठने की आदत मेरे को आज भी है, उठ के भगवान की पूजा करनी, बाबा जी का प्रकाश करना। वो जब मैं 4थी 5वीं में था, तो उन्होंने गुरु की चरणी हमें, बाबा जी के, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ अभी भी है, तो उन्होंने हमें बाबा जी के पास जोड़ दिया। तो सारा एक वैल्यू सिस्टम मेरी नानी ने हमें डेवलप करना शुरू किया, इतना अच्छा डेवलप किया कि आज अगर हमें पैसे नहीं भी थे तब भी ठीक थे, है भी है तब भी ठीक है, वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीना सिखा गए। इतना डिसिप्लिन उन्होंने इनकलकेट किया, कभी किसी का बुरा सोचने को दिल ही नहीं किया, मतलब एक एक चीज। तो वो हम लोगों को ये होता है यार, आई हैव गिवन अ कमिटमेंट, आई शुड रीच देयर। तो ये सारा कुछ मेरे को हमारी नानी जी ने हमें ग्रूम किया कि कैसे जिंदगी जीनी है, अच्छे तरीके से कैसे जीनी है, एक अच्छा इंसान कैसे बन के जीना है, वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ।
0: बिल्कुल, आप देखिए जब पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते थे या हम बुजुर्गों के साथ रहते थे, तो वो वैल्यू सिस्टम, वो संस्कार बुजुर्गों ने जो हमें दिए, तो आज की जो पीढ़ी है आप क्या समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों से दूर है?
1: देखिए सारे तो नहीं कह सकते, एक्सेप्शन रूल्स अ वर्ड, बट हमने काफी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। देखिए हमारे टाइम पे क्या कोई गैजेट नहीं होता था, जब हम ग्रो कर रहे थे तो मेरे को याद है, मैं आपसे अभी पहले डिस्कस भी कर रहा था कि हम लोग तो रात को वो देहाती प्रोग्राम भी सुन लेते थे, भैया जी रोनकी राम सरा, तो वो हमारा फगवाड़ा में तो जलंधर रेडियो हम कैच करते थे। तो एक मेरे को याद है आपसे जैसे शेयर किया, मौली धरती करके एक प्रोग्राम आता था, वो भी आता था। तो 9 बजे हर घर में ये होता था, एक वो पुदीने की चटनी बनती थी, दाल खाई और रोटी खा के हम लोगों को, हम आराम से सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, गैजेट की कोई डिस्ट्रेक्शन ही नहीं होती थी हमारे पास, और वी वर सो फोकस्ड। मैं अभी भी कई लोगों को बोलता हूँ कि भाई हमारे पास लिमिटेड गैजेट थे पर हमारा फोकस बहुत बढ़िया था। तो उस फोकस से हमारी लाइफ वॉज सो बेटर। अब क्या होता है कि रील देखने आप चले जाओ, मैं अपने घर में भी कई बार देखता हूँ, तो रील एक चालू होती है तो 2-2 घंटे आप रीलें देखते रहते हो।

0: तो आप सोओगे कब?
1: बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल गड़बड़ा गया है हम सबका।
0: जी सही बात है।
1: तो जगदीप सिंह जी, आपने जैसा बताया कि आप फगवाड़ा में अपनी नानी जी के पास ही बड़े हुए, जितनी भी वैल्यूज हैं उन्होंने आपको सिखाई, संस्कार आपको दिए, तो पढ़ाई भी आपकी सारी फगवाड़ा में ही हुई?
0: देखिये, मैंने मैट्रिक किया फगवाड़ा में, देन आई वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर लाइक माई फादर, बट उस टाइम क्या होता था, पूरे पंजाब में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, तो परसेंटेज यूज टू बी वेरी हाई। आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, आई वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट। कोशिश करते थे मेरे नानी जी सभी ने, बट कई बार होता है कि मतलब ऐसा नहीं था कि बुरा स्टूडेंट भी था, आई वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट, अच्छा पास हो जाता था। तो देन मैंने प्लस वन फिजिक केमिस्ट्री मैथ में किया, प्री इंजीनियरिंग ऑल्सो रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से किया। देन प्री इंजीनियरिंग के बाद में क्योंकि नंबर नहीं बने, तो माई फैमिली डिसाइडेड कि मैं जलंधर जाके थोड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा। देन बीएससी आई डिड फ्रॉम खालसा कॉलेज जलंधर। तो उसके बाद में सिंस फिजिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था मेरा, तो घर में सिंस एक चीज मैं ऐड करनी चाहूंगा, माई मदर वॉज अ वेरी गुड इंग्लिश टीचर, और एक मेरा जो ग्रामर का बेस बनाया था हमारे अशोक मास्टर जी थे, उनको तो मैं इंडेप्टेड टू एम, उन्होंने मेरा इतना अच्छा बेस बना दिया था ग्रामर का, मेरे 50 out of 50 आते थे ग्रामर में। एक तो घर में अंग्रेजी का माहौल था, मेरी माँ तो चलती फिरती डिक्शनरी थी, जब भी कोई वर्ड पूछना होता था तो मैं माँ से पूछ लेता था, शी यूज टू गिव टेल मी, तो मेरी कम्युनिकेशन वॉज वेरी गुड, मैं अंग्रेजी अच्छी बोल लेता। जब बीएससी करके निकला तो सिंस केमिस्ट्री बैकग्राउंड होने के कारण मेरा एक दोस्त था, ही वॉज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ही ऑल्सो लॉस्ट हिज फादर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो उसने कहा यार इधर ही आ जा तू, ये वाली लाइन पकड़ ले। पहले आई ट्राइड एज, मैं आपको बता रहा था, फौजी बनना चाहता था तो नहीं बना, तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स। काफी थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो हुआ जॉब मिलना, कहाँ एक नया बच्चा 20-21 साल का, 5-6 इंटरव्यूज में फेल हुआ होगा तो सब कुछ। देन आई स्टार्टेड नोइंग द ट्रिक ऑफ द ट्रेड कि भाई कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ, तो फिर मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में, डच मल्टीनेशनल में 21 साल की उम्र में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो फिर मैं कोलकाता में मेरा ट्रेनिंग हुआ, तो वहां पे भी एक कंडीशन थी, चैलेंज था, क्योंकि ये चैलेंजेस तो लेके चलने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने 8 बंदे लिए, 8 में से हम 4 निकाल देंगे, 4 रखेंगे, हमारा एवरी वीकेंड इट देयर यूज टू बी अ टेस्ट, वो समहाउ निकल गए, हम मैंने कर लिया। तो देन आई जॉइंड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट बठिंडा हेडक्वार्टर इन 82, तो वहां से एक हमारी, बट ये जो चीजें थी, मेरा डिसिप्लिन एंड अदर थिंग्स, वो मेरे को बहुत ही हेल्प किया उसने, क्योंकि वहां पे लंबी लंबी ट्रैवलिंग होती थी। आई यूज टू ट्रैवल सुबह, क्योंकि 4 बजे उठने की आदत थी, तो 5 बजे की बस पकड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता था। मेरे को ये होता था कि मैं सारी दुनिया से 2 घंटे पहले चल पड़ा हूं, तो मैं 2 घंटे पहले जाके मैं अच्छा काम भी किया, सब कुछ किया। तो देन मदर वॉज अलोन इन फगवाड़ा, तो फिर मैंने फगवाड़ा के ये नियर बाय जलंधर ही पढ़ता था, तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की सिंस लुकिंग इनटू माय गुड वर्क, तो उन्होंने मेरे को जलंधर भेज दिया ताकि मैं मदर के साथ। इन बिटवीन मैं एक चीज बताऊं, जब ये बचपन में ना, आई हैव नॉट लिव्ड लाइक कि जो एक नॉर्मल लाइफ होती है ना बचपन वाली, वो मैं नहीं जिया।
1: क्या कारण रहा कि वो जो बचपन के दिन होते हैं, वो शरारतें, वही बचपन का जो टाइम था आपके लिए, आप बता रहे हैं कि वो मैंने वैसा नहीं जिया जैसे आम बच्चे जो हैं बचपन में वो जिंदगी जीते हैं?
0: देखिए, 1976 में मेरे नानी जी की डेथ हुई, जब तक नानी जी थे तो शी वॉज लाइक अ फादर टू मी। उस टाइम तो मैंने बहुत शरारतें भी की, सब कुछ किया, बट नानी जी को, क्योंकि उनको रिपीटेड हार्ट अटैक आते थे, तो उन्होंने मेरे को ग्रूम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि बहन भी बड़ी हो रही है, मदर भी यंग है, कि भाई एक न्यूक्लियस तो मैं ही होऊंगा। उन्होंने मेरे को गाइड करना शुरू कर दिया कि पहली तारीख को राशन लेके आना है, सारा घर का राशन डालो। उस टाइम हम लोगों के पास गैस वैस तो होती नहीं थी, स्टोव होते थे, केरोसिन लेके आओ, सारा जो जो जरूरत होती थी उसकी प्लानिंग, मेरी नानी ने मेरे को प्लानिंग सारी सिखानी शुरू कर दी। देन 76 में शी पास्ड अवे, देन मैं एकदम से बचपन से मैच्योर वाले उसमें चले गया,
1: मेरी जिम्मेदारी जो एक कंधे पर पड़ती है वो, उसका एहसास आपको हुआ?
0: यस, एहसास भी, आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विद माई मदर्स वैल्यू, मैं कह यार व्हाई शी शुड सफर। तो मैंने, मेरा एक दोस्त था वहां पे, वो उसके पेरेंट्स भी, मदर भी जॉब करते थे, टीचर थे, तो उसके फादर वाज आल्सो डूइंग अ जॉब, तो वो पीछे ना अपने पेरेंट्स के लिए सारा खाना वाना भी बना देता था। मैंने, आजकल तो वो अमेरिका में सेटल्ड है, तो मैंने उससे खाना बनाना सीखा, ताकि मैं कह यार मदर जब घर आए तो उसको खाना तो मिले। फिर मैं

0: कॉलेज जाने से पहले उनके लिए सब्जी बना के पहले स्कूल, क्योंकि आई यूज टू सेव, इवन हमारा मॉडल टाउन में घर होता था तो साइकिल पे लेके मैं उनको स्कूल छोड़ आता था ताकि भाई वो रिक्शा वाले पैसे बच जाए। तो ये होता था, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो वो वाली जो स्ट्रगल ने मेरे को इतना कुछ सिखाया, वो 5-6 साल जो है, 5-6 साल में मैंने जिंदगी के बहुत बहुत घिनौने सच देखे। उसने मेरे को जिंदगी का वो रूप दिखाया है कि भगवान, बट उस रूप को देखने के बाद में, कहते ना बंदा बचपन तो बाद सीधा ही बुढ़ापा तो नहीं कहा, दैट्स नॉट अ राइट थिंग, बट यस आई हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग दोज 5 ईयर्स आफ्टर द डिमाइस ऑफ माई नानी। बट वो 5 साल ने मेरे को हर चीज के, शायद आई थिंक नाउ आई, उस टाइम भी आई वॉज अंडरस्टैंडिंग द पर्सन वेरी इजीली। तो वो होता है कि जैसे हर, कहते ना कि काली रात के बाद एक सवेर भी होती है।
1: जी जी।
0: तो वो सुबह जब मैं सिलेक्ट हुआ, उन दिनों में देखिए कर करा के मेरे को सारा 82 में 2000 रुपीज इनकम वाज क्वाइट गुड इनफ। देन दैट मल्टीनेशनल कंपनी

0: हर चीज के, शायद आई थिंक नाउ आई उस टाइम भी आई वाज अंडरस्टैंडिंग द पर्सन वेरी इजीली. तो वो होता है कि जैसे हर कहते हैं ना कि काली रात के बाद एक सवेर भी होती है.
1: जी जी.
0: तो वो सुबह जब मैं सिलेक्ट हुआ उन दिनों में, देखिए कर करा के मेरे को सारा 82 में 2000 रुपीस इनकम वाज क्वाइट गुड इनफ. देन दैट मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड पेइंग मी अराउंड 2000 रुपीस एक्सपेंस, ये वो सारा कर करा के.
1: जगदीप सिंह जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे. यहां पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: सर अभी ये बात वो मेरी स्ट्रगल वाली चल रही है, तो वो समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते जाते ही रहते हैं.
1: बिल्कुल जरूर.
0: ये मेरे साथ उस टाइम मैं काफी गुनगुनाता था. वैसे तो आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ किशोर जी, मन्ना डे जी, क्योंकि हमारे टाइम की सिंगिंग वाज सो सो गुड. तो हम लोग तो वो इतना है, इसके लिरिक्स भी आप देखिए कितने मजेदार है. तो ये दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे वर गिविंग अस सो सो मेनी थिंग्स. हम लोग बहुत एंजॉय किया और ये इंस्पिरेशन देते थे हमें.
1: बिल्कुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल गीत है, आइए सुनते हैं.

0: उद्यमी होने के साथ साथ बहुत से लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। जगदीप सिंह जी, आपने जिस तरह से बताया कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे, तो बहुत से लोगों का मन करता है कि जब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उनका मन करता है कि फॉरेन कंट्री में ही सेटल हो जाएं। तो क्या आपका मन नहीं किया?
1: पता नहीं मेरी ग्रूमिंग ऐसी हुई या क्या हुआ, मेरे को ना अपना ये कंट्री जो है ना यही अच्छा लगता है मेरे को। मैं देखिए उसके बाद में मेरा परमानेंट रेजिडेंस भी हुआ, पूरी फैमिली का हुआ। लोग एस्पायर करते कि 2009 में मैंने क्या किया था वो उसको बाद में अगर आप इफ यू अलाउ तो अभी मैं बता सकता हूँ कि जब मैंने 23 साल नौकरी इस मल्टीनेशनल में की उसके बाद में आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, क्योंकि एक बिजनेस माइंड था मेरा कि यार मैंने कुछ करना है जिंदगी में। उस थिंकिंग के कारण आई टुक अ डिसीजन, 23 साल की नौकरी मैंने झटके से छोड़ी और देन एक एज अ कवर मैंने आइल्स क्लियर किया। पता नहीं सात बैंड आए थे उस टाइम मेरे, तो मैंने अपने पॉइंट्स बनाए और 74 पॉइंट्स बन गए थे। उस टाइम पॉइंट्स चलते थे, तो मैंने कनाडा के लिए एज अ कवर कि अगर बिजनेस में मैं फेल हो गया तो चलो कनाडा में जाके मजदूरी तो कर ही लूंगा, तो जस्ट एज अ कवर। क्योंकि एक उस टाइम व्हेन आई लेफ्ट द जॉब, उस टाइम मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहा था, बेटियां मेरी कॉलेज में जा रही थी, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। बट जब ये मेरा कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी आया तो उस टाइम मैंने बिजनेस में अपने आप को रीजनेबल एस्टेब्लिश कर लिया था। तो फिर मन तो आ गया, मेरी वाइफ के पेरेंट्स वगैरह सारे कनाडा में सेटल्ड हैं, कनाडा या इंग्लैंड में उसकी एक बहन है, दे आर सेटल्ड देयर, तो नेचुरली उसके लिए तो इट वॉज बिग थिंग, तो मेरे लिए भी थी क्योंकि वो फैमिली तो अपनी है। तो मैंने जब 2009 में मैं कनाडा गया तो वो जो मेरी अपनी फीलिंग कह लीजिए, जो लॉयल्टी टुवर्ड माय ओन कंट्री, मतलब एक पैट्रियोटिज्म कह लो, मेरा दिल नहीं लगा। मैं 20 दिन के बाद वापस आ गया। मेरा बेटा उसको मैंने वहां डाला ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे आपके साथ ही शेयर किया, वो रेडियो स्टेशन का करने लगा। बेटी मेरी को मैंने डाला फैशन मार्केटिंग में। आई केम बैक विद इन 22 डेज। उसके बाद में आई डिसाइडेड कनाडा इज नॉट अ कंट्री फॉर मी, I'll keep on consolidating my things here. तो मैंने वो permanent residency मैंने छोड़ दी। उसके बाद में naturally my wife, she is such a good lady और मेरे इतने दुख सुख में साथ हुई। आपको तो पता है कि middle class एक job करने वाले इंसान के साथ क्या कुछ होता है। She was always a pillar of support to me. तो वो भी 3-4 महीने बाद वापस आ गई। She wait कि भाई ये बंदा तो वापस नहीं आएगा, but उसने मेरा पूरा साथ दिया। She also came back. फिर 3 साल के बाद में मेरा बेटा सुप्रीत वो भी इधर आ गया। तो देन अभी मेरी बेटी दाओ, शी इज अ सिटीजन ऑफ कैनेडा बट शी इज ऑल्सो हेल्पिंग हस्बैंड इन लुधियाना, तो वहाँ पे उनका बिजनेस भी वो भी हेल्प कर रही है। तो समाओ ये एक चीज है।
0: जी बिल्कुल, आप पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल हो सकते थे लेकिन आपने अपने भारत को प्रेफरेंस दी, अपने देश को प्रेफरेंस दी।
1: सर इस जैसा कोई नहीं है, मैं काफी घूमा हुआ हूँ, मैंने अमेरिका भी देखा, कनाडा भी देखा, देन मैंने काफी ट्रेवल किया हुआ है, काफी कंट्रीज को किया है। देखिए ये 2-4 दिन के लिए तो ठीक होता है या महीना 2 महीने के, मेरे हिसाब से देखिए मैम, किसी को कुछ नहीं, हर एक की अपनी लाइकिंग होती डिसलाइकिंग होती है। अभी देखिए इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी है हमारी कंट्री में, हमने तो वो मैं जैसे आपके साथ शेयर कर रहा था कि वो जो दिल्ली जाने वाली जलंधर से रोड होती कितनी पतली होती थी, ना ही यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था हमारे लिए। तो ये गाड़ियाँ उस टाइम सुनते थे कि भी ऐसे गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, ये होता है। अब तो हम लोग इतने लग्जरी कारों में घूम रहे हैं या सब कुछ हो रहा है, तो हमारे पास क्या, मैंने इस जिंदगी में सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। कहाँ लाइट बिल्कुल नहीं होती थी, लाइट के बाद हम पक्षियां भी जलते थे, सब कुछ होता था, बोर्ड के थले भी सो जाइदा सीगा, तो सारा कुछ असि देखा जिंदगी। आई थिंक आई शुड यूज बिट ऑफ पंजाबी सो दैट बिकम्स, तो वी हैव सीन एवरीथिंग, तो उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अभी तो इंडिया में रहने का अलग ही एक मजा है। अब तो देखिए जो पुराने लोग हैं, उस टाइम नया नया पार्टीशन हुआ था, पंजाब में एक ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर था, घरों में बहुत ग्लूमी एटमॉस्फेयर होता था, लुट्टे पुट्टे सारे आए हुए थे, उस टाइम पंजाब वाज क्वाइट डिफरेंट। अब तो यहाँ पे एवरीथिंग इज सेटल डाउन, सो मेनी यूनिवर्सिटीज।
0: जी तो पार्टीशन का टाइम आपने देखा?
1: नहीं जी, मैं तो 61 बॉर्न हूँ।
0: आपकी नानी ने आपको वो पूरा घटनाक्रम सुनाया होगा कभी?
1: जी बिल्कुल।
0: तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करें अगर आपको याद है कुछ तो।
1: नानी जी ना क्या था कि दे वर डूइंग वेरी वेरी वेल, क्योंकि उनके फादर वहाँ पे एक खालसा स्कूल के हेडमास्टर थे नियर टू रावलपिंडी, तो बट्टे थे उनके पास, कई कुछ था क्योंकि ये लाहौर कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो इन्होंने जिंदगी का बहुत कुछ देखा। असली जो इंडिपेंडेंस की कीमत है इन लोगों ने दी है, बहुत बड़ी।

गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं श्री जगदीप सिंह, जो एक सफर

0: कीमत। वहां से इधर आके ना द वर्स्ट पार्ट विच हैड हैपेंड इज कि वहां तो अच्छे चल रहे थे, यहाँ पे आके एक रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया। वो एक्सेप्टेबिलिटी काफी साल लगे उसको, अभी भी एक बार वो रिफ्यूजी लोगों को अच्छा नहीं समझते यहाँ पे जो पहले रहने वाले थे उस टाइम तो। बट बिकॉज ऑफ हर कैलिबर शी बिकेम अ बिग फोर्स इन फगवाड़ा। उनकी बहुत बहुत लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो गुरुद्वारा में खड़े हो जाते थे तो उनकी जो स्पीचेस सुनने के लिए लोग आते थे, सिर्फ स्पीचेस सुनने के लिए। और उनकी जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग थी वो भी एक पार एक्सलेंट। अब देखिए ना, उधर से पार्टीशन के बाद में उन्होंने बड़ी बेटी को बी ए बी एड कराया, बेटे को उन्होंने इंजीनियर बनाया। एक सिर्फ सिंपल सैलरी ऑफ टीचर तो काफी कुछ उन्होंने इकोनॉमिकल चैलेंजेस तो फेस किए, बट सुना जरूर था उनसे कि भाई हम वहां पे ये थे वो थे ऐसे थे, बट वो पॉजिटिव रहे, उनकी भी ग्रूमिंग अच्छी। दैट्स व्हाई शी कुड ग्रूम मी एंड माय सिस्टर, वी बोथ आर द सेम।
1: जी, तो जगदीप सिंह जी, क्योंकि आपने मल्टीनेशनल कंपनी से अपना सफर शुरू किया, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं कुछ अलग करना चाहिए, तो मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ने और अपनी कंपनी बनाने का ये जो आइडिया है आपको कैसे आया और किस तरह से आपने शुरुआत की?
0: सर, मैंने वो ऑलमोस्ट 23 साल उस कंपनी में काम किया तो एक सैचुरेशन आ गया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जी वहां पे कोई फर्दर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बाहर से लोग आ रहे थे ना, एक सैचुरेशन आ गया। आई वाज नॉट एंजॉयिंग व्हाटएवर आई वाज डूइंग। दाओ मेरे को सैलरीज आ रही थी, आई वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन भेजा, हमारा 3 महीने का नोटिस पीरियड था, तो माई रीजनल मैनेजर एम्फेसाइज कि डोंट लीव, देन सेल्स मैनेजर ऑल्सो दे सेड, बट सिंस आई डिसाइडेड आई वाज फर्म ऑन इट कि यार जो भी होगा। माई मदर एंड माई वाइफ, ये दोनों मेरे लिए पिल्लर ऑफ सपोर्ट थे। मेरी बीवी ने भी कहा कोई नहीं हम गुजारा कर लेंगे, तू अब शुरू कर। तो ये दोनों लेडीज की मेरे को इतनी बड़ी सपोर्ट मिली। तो मदर मेरी कहती मेरे को 10,000 पेंशन आती है, तो कैलकुलेशन लगाया कि भाई मैंने 23 साल नौकरी की है, मेरे को वो जो पीएफ और ग्रेच्युटी का मिलके 10-12 लाख मिल जाएगा। उस टाइम ना एमआईएस में वो 12% इंटरेस्ट होता था, मेरे को 10 लाख मिला वहां से, तो मैंने वो एमआईएस करा लिया। 12,000 रुपया कि 10,000 रुपया वो आ जाता था, तो घर का खर्चा 30-40 होता था क्योंकि यहाँ पे मेरा 44 में अभी भी आया out that flat. तो हाउसिंग बोर्ड का उसमें हम रहते थे, खर्चे कम होते थे। तो आई कैलकुलेटेड एवरीथिंग। कपूर साहब, एक चीज बोलूं, ये जो नौकरी वाले से जब आप बिजनेस पे जाते हो, आपके फोकस तो बहुत बड़ा चाहिए होता है। इतनी परेशानी कहाँ पे, मल्टीनेशनल में एरिया मैनेजर ही करते हुए आपको फोन चुप नहीं होते क्योंकि आप ब्रांच भी हैंडल कर रहे हो, कई कुछ हैंडल कर रहे हो, तो वो एक रुतबा होता है। तो एकदम से जब आपने अपना काम शुरू किया तो आप तो स्ट्रगल चालू हो गया दोबारा, जो आपने 82 में देखा उससे भी बदतर स्ट्रगल चालू। छोटी कंपनी का फ्रेंचाइज लिया था तो वो लेके शुरू हो गया। तो वो एक साल जो मैंने निकाला है, मैं धर्मशाला में भी निकला हूँ, पैसेंजर ट्रेन में भी गया हूँ, काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, ताकि भी मेरी फैमिली को ये ना लगे कि भाई ये बंदा ने नौकरी छोड़ दी और हमें भूखे मार रहा है। तो इतनी मेहनत की, सब कुछ हुआ, भगवान, मैं ना ट्रेवल जब करता था आस्था है भगवान में, हाथ में सुखमनी साहब का एक गुटका होता था, 2 पाठ कर लेता था, इतनी बल मिलता था उससे, इतना बल मिलता था। और भगवान कब अपने मेरे कार्य सारे सीधे कर रहा था मेरे को कुछ नहीं पता चला। 1 साल के बाद में व्हाटएवर आई वाज अर्निंग फ्रॉम दैट मल्टीनेशनल कंपनी उससे 2 गुना पैसा कमाना शुरू कर लिया मैंने। और मेरे को फिर मैं कुड भी की ये जो मेरा डिसिप्लिन बहुत हेल्प किया, कुछ मेरे डॉक्टर्स लोग जिनको मैं सामान बेचता था उन लोगों को भी लगा यार ये बंदा इज मैन ऑफ सब्सटेंस, तो ये साथ में खड़े होने वाला है। मैंने पूरी मेहनत से फिर उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जैसे भगवान आपको टेस्ट करता है ना, 2006 में मेरी मदर को कैंसर हुआ, वो चल बसे। वो जैसे ना कोई होता है कि कुछ लेडीज होती है या देवी होती है, वो आपकी सेवा करने के लिए ही आती है। आई थिंक दैट लेडी वाज जस्ट केम हियर टू कि मेरे की सेवा, हमारे बच्चे पाल गए और कुछ नहीं। उस टाइम तो मैं सेटल होना शुरू हो गया, पैसे बिजनेस में थोड़े हो ही जाते हैं कि चल भाई उसको जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो शी पास्ड अवे 17 जुलाई 2006। फिर मेरे लिए मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वॉज माई वाइफ। मैं ब्रोक हो गया था, मम्मा चले गए तो टूट गया था, फिर मेरी वाइफ ने मेरे को बढ़ाया। अभी ये चल ही रहा था, 23 जुलाई को आई मेट विद अ नियर फेटल एक्सीडेंट। मेरा सारा राइट साइड क्रश हो गया, टांग टूट गई, बाजू टूट गई, कई कुछ हुआ मेरे को। आई वॉज बेड रिडन फॉर 2 ईयर्स। इसमें मेरी बीवी मेरे बच्चों ने इतना साथ दिया, बस पूछो कुछ ना, क्योंकि वो मेरा घर संभालने वाली मेरी बीवी थी, वो उसने भी मेरा कहा उस टाइम एक्सीडेंट तो मेरा हुआ पर भुगता उसने।

0: फिर क्योंकि बिल बनाने होते थे, फिर वो बिजनेस को भी संभालना सारा कुछ। मैंने तो इंस्ट्रक्शन लेटे लेटे, मैं तो पासा एक तरफ सो भी नहीं पाता था, रात को कई बार होता क्योंकि सारा कुछ टूटा हुआ था मेरा, तो मैं कई बार हंसता हूँ कि मेरा जितना भी स्केल्टन था टूट गया था। तो फिर मेरी बीवी वाज अ बिग सपोर्ट।
1: जी बिल्कुल, जब अपनों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बौना हो जाती है। जगदीप सिंह जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे शाम सुहानी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में।
0: जी आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर विद यू।
1: दोस्तों, शाम सुहानी कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं श्री जगदीप सिंह, जो एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ बहुत से लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे बातचीत हम यूं ही जारी रखेंगे शाम सुहानी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं मीनाक्षी कालिया। अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जाँच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। 1, इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट। 2, प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण। 3, डिमांड और हार्म रिडक्शन। और 4, क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1 दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर

0: दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंकर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz से आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
3: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
4: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
5: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को ₹250 दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: जग घूमें आधार जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
4: अरोड़ा प्लाईवुड
5: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
6: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
0: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
6: ये आकाशवाणी है।
0: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
6: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
0: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
6: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
0: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
6: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
0: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
6: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

0: 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री भूपेंद्र यादव ने गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और वन्य प्रजातियों के संरक्षण में सहायता हेतु तकनीकी क्षमता के विकास का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के भिवानी खेड़ा हलके में महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम, नागरिक अस्पताल के विस्तार सहित कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। श्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के तुलाराम स्टेडियम में नशे के विरुद्ध आयोजित हाफ मैराथन को झंडी दिखाई और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती है। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है।

0: ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देश से प्रमुख निर्यातक बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रक्षा निर्यात भी वर्ष 2013 और 14 के करीब 600 से 700 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर संकट से उबरना, भारत के गिद्धों का संरक्षण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, हरियाणा वन एवं वन्य जीव विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के वन और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी शिरकत की। अपने संबोधन में श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोण समग्र पारिस्थितिकी तंत्र उन्मुख संरक्षण मॉडल पर आधारित है और किसी विशेष प्रजाति तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न प्रजातियों के गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और वन्य जीवन में प्रजातियों के संरक्षण में सहायता हेतु तकनीकी क्षमता के विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से भारतीय गिद्धों की आबादी में तेजी से आई गिरावट का मुख्य कारण उनकी खाद्य श्रृंखला में व्यवधान और गिद्धों द्वारा खाए जाने वाले जानवरों के लिए दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग है।
1: यही कारण है कि जो वर्चर्स हैं उनकी संख्या में 90% से ज्यादा की गिरावट है। भारत में जो 9 वर्चर्स हैं, यानी 9 किस्म की प्रजातियां तक समाप्त हुई, तो इसका कारण क्या है? जो हमारे फॉरेस्ट इलाके हैं, उधर भी अगर कारण ध्यान में आता है तो जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके फूड का संकट।
0: केंद्रीय मंत्री ने पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का दौरा भी किया और वहां गिद्ध संरक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्टोरी ऑफ जटायु सेविंग इंडियाज वल्चर नामक कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही गिद्ध संरक्षण विषय पर आयोजित ऑनलाइन चित्रकला और डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भिवानी जिले के भवानी खेड़ा हलके में आयोजित विकास संकल्प जनसभा में क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जनसभा में लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया और कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
2: और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि भवानी खेड़ा के विकास में हरियाणा सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसका तेज गति से विकास करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। आज यहाँ मैंने लगभग 78 करोड़ की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ किए हैं। इनमें 24,91,00,000 रुपए की लागत के 3 परियोजनाओं के शिलान्यास तथा 53,01,00,000 रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज उद्घाटन किए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने भवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि द्वारा रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए भवानीखेड़ा में 15 करोड़ रुपए की लागत से महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम और 10 करोड़ रुपए की लागत से नया लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए शहर में 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 50 अतिरिक्त बिस्तरों से नागरिक अस्पताल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने गांव रेवाड़ी खेड़ा में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV सब स्टेशन स्थापित करने, गांव खरक में महिला कॉलेज के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाने और भवानी खेड़ा कस्बे में जमीन उपलब्ध होने पर नई सब्जी मंडी का निर्माण कराने का

0: ऐलान भी किया। हलके को उपमंडल बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि 2028 में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होते ही भवानी खेड़ा को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने गांव बलियाली तथा जमालपुर दो में 90-90 लाख रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय और गांव बड़सी गुजरान में 90 लाख रुपए से बहुउद्देशीय हॉल बनाने की मंजूरी भी दी। इससे पहले भाजपा नेता किरण चौधरी ने क्षेत्र में जल व सिंचाई परियोजना के लिए प्रयास करने के लिए आभार जताया।
1: तो हमारा ये इलाका था, ये बागड़ का इलाका था, यहाँ कुछ नहीं होगा करता था। 70 साल पहले एक कनाल नेटवर्क बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात इतने साल बीत गए, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री का, जिनकी अगुवाई के अंदर दूसरी बार जो है वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है। धन्यवाद करो हमारे मुख्यमंत्री का, जिन्होंने कभी कोई पक्षपात नहीं करा, कोई क्षेत्रवाद नहीं करा। यहाँ जो कांग्रेस के लोग हैं, सतर्क रहना आप उनसे, ये केवल और केवल गुमराह करने के लिए आते हैं।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम से नशे के विरुद्ध आयोजित हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिले के लाखों युवाओं ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशे से बचाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के लोगों को नशा मुक्ति के संकल्प के लिए किए गए इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।
2: रेवाड़ी ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, नशे से जंग रेवाड़ी के संग मैराथन में आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। रेवाड़ी ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई करने का संकल्प ले लिया है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं विशेष तौर से जिला प्रशासन, खेल विभाग, सामाजिक संगठनों और प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों तथा विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारी लाखों की संख्या में युवा शक्ति को शुभकामनाएं देता हूँ।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा, खेल युक्त हरियाणा और शिक्षित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हर महीने किसी न किसी जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेल और शिक्षा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री भूपेंद्र यादव ने गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और वन्य प्रजातियों के संरक्षण में सहायता हेतु तकनीकी क्षमता के विकास का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
5: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
6: जय माला।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला के अंतर्गत शौर्य गाथा। फौजी दोस्तों को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। ये वाक्य अपने अंदर निस्वार्थ बलिदान की भावना को संजोए हुए है। एक सैनिक को सबसे ज्यादा अपने देश से प्यार होता है। वो दूर रहता है अपनों से, क्योंकि सारा देश ही उसका अपना परिवार होता है। आजादी के रखवाले, देश की सीमा के पहरेदार, देश पर जान न्योछावर कर देने वाले हमारे जांबाज सैनिकों के रोम रोम में देशभक्ति का जज्बा भरा होता है। फिर चाहे वो अनंत आकाश के विस्तार को चुनौती देकर अपने देश की रक्षा करनी हो, या समुद्र की गहराई में जाकर अपने देश के लिए जंग लड़नी हो, या फिर जमीन और पर्वत पहाड़ों पर असहनीय ठंड गर्मी बरसात की परवाह के बिना अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, हर मोर्चे पर हमारे सैनिक विजय पताका फहराते हैं। फिर चाहे उन्हें उस विजय के गुलिस्तां को खिलाने के लिए अपने खून से ही उसे क्यों न सींचना पड़े। ये हमारे वीर सैनिकों के देशभक्ति का जज्बा और अद्भुत साहस ही है जो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ही सिर्फ सोचने भर से दुश्मनों के पैर कांपने लगते हैं। वीरता और सर्वोच्च बलिदान का पर्याय है हमारे फौजी साथी, जिनके अदम्य साहस की कहानियां हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास बड़े ही गर्व के साथ कहता है। शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर, तुम्हारा वंदन है।

फौजी दोस्तों, आज हम जिस जांबाज फौजी के साहस और देशभक्ति के जुनून की गाथा लेकर आए हैं वो है देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार, जो कि कारगिल युद्ध के हीरो के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारे त्योहारों में खुशियों की रौनक इसलिए है क्योंकि सरहद पर हमारे देश का सैनिक अपनी जान हथेली पर लिए खड़ा है, जो सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जो हथेली पर रखकर जान हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाते हैं। ऐसे जांबाज सैनिक हमारे देश की आन बान और शान हैं। देश के ऐसे वीर जवानों को देश का सलाम है।

फौजी दोस्तों, अदम्य अद्भुत अकल्पनीय शूरवीरता से परिपूर्ण नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के एक गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। दिगेंद्र बचपन से ही सैन्य माहौल में पले और बड़े हुए। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर जवान थे। वर्ष 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। यानी वीरता और जांबाजी तो दिगेंद्र के खून में दौड़ती थी। अपने पिता से प्रेरित होकर दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। फौजी दोस्तों, दिगेंद्र कुमार की शूरवीरता इतनी अद्भुत और अदम्य थी कि राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद यानी वर्ष 1985 में दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के खिलाफ अभियान के लिए गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान एक ही दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन के गोला बारूद का ठिकाना नष्ट किया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ा लिया। इसके अलावा जब वो अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में पुल के नीचे से कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंका। दिगेंद्र ने बड़ी बहादुरी से उस ग्रेनेड को कैच कर लिया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अद्भुत साहस और वीरता के साथ इतने आतंकियों के साथ लोहा लेने के बाद दिगेंद्र कुमार को कुछ साल के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा में भेज दिया गया। कुपवाड़ा में भी उन्होंने आतंकियों का काम तमाम करना जारी रखा। अपनी निर्भीकता और जांबाजी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके लगभग एक साल के बाद यानी वर्ष 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरत बल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फौजी दोस्तों, ये निर्भीक और बेबाक जांबाज योद्धा यही नहीं रुका, अभी तो उसे अपनी मातृभूमि के लिए और भी बहुत कुछ करना था। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।

ये इस जांबाज योद्धा की वीरता के अद्भुत किस्से ही थे जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दे दिया, कोबरा। अब तक दिगेंद्र कुमार नाइक दिगेंद्र कुमार कोबरा के नाम से जाने जाने लगे थे। वर्ष 1999 के आते आते तो नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडो में गिने जाने लगे थे। वर्ष 1999 वही साल था जब दुश्मन ने धोखा देकर भारत की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना जबरन कब्जा जमा लिया था। ये चोटियां इतनी ऊंचाई लिए हुए थीं कि दुश्मन को इसका बहुत फायदा था। यही वजह थी कि इन पर वापस नियंत्रण पाना भारतीय सेना के लिए इतना आसान नहीं था। बहुत ऊंचाई और दुर्गम रास्तों की वजह से ये लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन दुश्मन के सामने भारत के वीर थे जिनके शौर्य और वीरता के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सिर झुका लेती है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है।

0: फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं शौर्य गाथा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित जाबाज नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा। फौजी दोस्तों, 15,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग की पहाड़ी को आजाद कराने के लिए नायक दिगेंद्र कुमार की जबरदस्त प्लानिंग ने तत्कालीन आर्मी चीफ वीपी मलिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। इससे पहले इस पहाड़ी को आजाद कराने के 3 प्रयास किए जा चुके थे जो असफल हो गए थे। कारगिल की लंबी लड़ाई के दौरान पहली विजय दिलाने वाले थे नायक दिगेंद्र कुमार। कारगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जमीन वापस पाने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। आर्मी चीफ वीपी मलिक ने नायक दिगेंद्र कुमार की युद्ध की

जबरदस्त प्लानिंग सुनकर तोलोलिंगी की पहाड़ी पर फिर से कब्जा करने की जिम्मेदारी दो राजपुताना राइफल्स को सौंप दी। अब दो राजपुताना राइफल्स का दल पूरी बहादुरी के साथ तोलोलिंगी की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और इस दल की अगुवाई कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। इस दल में नायक दिगेंद्र कुमार भी थे। करीब 14 घंटे तक चट्टानों पर खड़ी चढ़ाई करने के बाद ये जाबाजों का दल तोलोलिंगी की पहाड़ी पर पहुंचा, जहां पर दुश्मन देश ने 11 बंकर बना रखे थे। जैसे ही ये दल आगे बढ़ा, दुश्मन देश के सैनिकों ने भीषण गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इतनी भीषण गोलीबारी और उस पर खराब मौसम, दल को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी बीच नायक दिगेंद्र कुमार ने आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ पत्थर के बीच डाला और दुश्मन की फायर करती हुई मशीन गन की बैरल उनके हाथ आ गई। इसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड निकालकर बंकर के अंदर फेंका, जिससे पूरा बंकर पूरी तरह से नष्ट हो गया।

दुश्मन की सारी मशीन गने भीषण आग उगलने लगी और इस भीषण फायरिंग की चपेट में मेजर विवेक कुमार गुप्ता और कुछ भारतीय सैनिक आ गए और वो वहीं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इतनी भीषण फायरिंग में दल की अगुवाई कर रहे मेजर विवेक गुप्ता और कुछ सैनिकों की शहादत हो जाने के बाद भी नायक दिगेंद्र कुमार ने अपना हौसला नहीं खोया। इस गोलियों की बरसात में दिगेंद्र कुमार को 5 गोलियां लगी, लेकिन ये गोलियां भी उनके हौसले को ठंडा नहीं कर सकी, बल्कि उनके गुस्से की आग को और भड़का गईं और उनके जीतने की जिद को और बढ़ा गईं। दिगेंद्र ने आगे बढ़ना जारी रखा और साथ ही वो आगे बढ़ते हुए दुश्मन के बंकरों पर ग्रेनेड फेंककर उनको तबाह करते जा रहे थे। जब अपने बचे हुए सैनिकों के साथ दिगेंद्र आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक पीछे से हमला हुआ और उनके कुछ साथी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ये कोई आसान शिकार नहीं थे, बल्कि ये तो मां भारती के शूर वीर रणबांकुरे थे, जिनकी वीरता का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। दिगेंद्र कुमार और उनके साथियों ने 30 हमलावरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कुछ दवाइयों और दर्दनाशक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए दिगेंद्र और उनके साथी लगातार आगे बढ़ते गए। बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए दिगेंद्र और उनके साथियों ने सभी 11 बंकर तबाह और बर्बाद कर दिए। 11 के 11 बंकर तो तबाह हो गए, लेकिन दिगेंद्र के साथी सैनिक भी इस भयंकर युद्ध में शहीद हो गए। और सुबह होते होते दिगेंद्र के आखिरी साथी सरदार सुमेर सिंह राठौर को भी गोली लग गई। अब नायक दिगेंद्र कुमार ने अपने साथी की मशीन गन उठाई और पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। उसी वक्त दिगेंद्र के सामने अचानक से दुश्मन देश की सेना का मेजर आ गया। जैसे ही दुश्मन देश के मेजर से दिगेंद्र का आमना सामना हुआ तो दिगेंद्र ने गोली चलाई, लेकिन तभी दुश्मन देश के मेजर ने अपने पिस्तौल से गोली चला दी जो दिगेंद्र के लगी। लेकिन अब तक उसकी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और वो मेजर दिगेंद्र पर झपट पड़ा और लड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नायक दिगेंद्र कुमार ने उस दुश्मन देश के मेजर की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और अपना खंजर निकालकर दुश्मन देश के उस मेजर की गर्दन काट दी। भारत के बहादुर सैनिकों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी से एक बार फिर से देश के हिस्से में विजय लिख दी थी। सुबह सुबह बुरी तरह घायल, लेकिन देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने के बाद भारत के इस शूरवीर नायक दिगेंद्र कुमार ने तोलोलिंग की पहाड़ी पर देश की आन बान और शान तिरंगे को लहराकर देश के दुश्मनों को ये संदेश दिया कि भारत के जांबाज सैनिक देश की रक्षा में खड़े हैं और उनके होते कोई देश की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता। और इस शूरवीर जांबाज योद्धा नायक दिगेंद्र कुमार को उनके शौर्य और अद्भुत अदम्य अकल्पनीय साहस और वीरता के लिए सम्मानित करते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जोश में आते हैं दरिया की रवानी की तरह, खून दुश्मन का बहा देते हैं पानी की तरह, रण में बिफरे हुए शेरों की तरह लड़ते हैं, साफ कर देते हैं दुश्मन को जिस युद्ध में ये पड़ते हैं।

फौजी दोस्तों, एक सैनिक अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के सामने और कुछ याद नहीं रखता, फिर चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो। इस कर्तव्य को निभाते हुए एक सैनिक के लिए देश सर्वोच्च सर्वोपरि होता है। फौजी साथियों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, संपादन मनीषा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया तेजश्री कांबले ने। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए एम गोविंद के लिखे मूल कन्नड़ प्रहसन का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं जी बी आलदकट्टी, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर।

0: अजी अजी गाड़ी के आने का समय हो गया है, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, जल्दी आइए। ओफो चलो भी।
1: अरे एक मिनट रुको ना, कम से कम 2-4 कपड़े सूटकेस में डालने तो दो। अरे जल्दी किस बात की है, आखिरी दम तक तुम जल्दी करना छोड़ोगे नहीं शांता। और तुम कहती हो कि वहाँ ये देखो मलाई वाला दही अच्छा मिलता है।
0: हाँ।
1: इसलिए 2 दिन और ठहर सकते, वैसे तो मैंने 4 दिन की छुट्टी भी ले रखी है, मगर शांता तुमने तो हमारे आने की खबर उनको दी नहीं। अगर वे गाँव में नहीं हुए तो
0: देखिए जी, महीने के बाद आने के लिए मेरी सहेली ने पिछले महीने ही तो खत लिखा था, अलावा इसके बगैर इतला दिए वहाँ पहुँच जाने से वो भी तो दंग रह जाएंगे।
1: हाँ, बात तो ठीक है।
0: और सुनिए,
1: हाँ।
0: बाग बगीचा घर गृहस्थी हाँ। गाय भैंस छोड़ के वो पति पत्नी आखिर जा भी कहाँ सकते हैं?
1: अरे छोड़ छोड़ छोड़, ऐसा करो दरवाजे बंद करो और ताला ठीक से डालो, दोबारा हिला के देखो मजबूत बैठा है कि नहीं।
0: हाँ हाँ मजबूत बैठा है, चलिए ना।

0: आइए बहन जी आइए आइए, भाड़ा भाड़ा जी, राव साहब आओ, राव साहब मेरा घोड़ा सरदार है सरदार आओ।
1: अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या करता है, ये मेरा सूट के देता है और वो उसकी थैली, अरे छोड़ो ना भाई।
0: अरे कोई बात नहीं राव साहब, इसमें है भी क्या, आप बड़े आदमी हैं, चाहे कुछ भी दे दीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं भाई, देखो ये मेरी धर्म पत्नी है और हम एक ही जगह जाने वाले, हमें सिर्फ एक टांगा काफी है, एक को वापस जाना पड़ेगा भैया।
0: मुझसे गलती हो गई साहब, माफ करना, मुझे क्या मालूम था, समझा था दोनों अलग अलग हैं। आप पहले क्यों नहीं बोले राव साहब?
1: अरे कैसे बोल सकता मैं यार, तुम लोग तो सवारी के लिए ऐसा झगड़ते हो जैसे कभी सवारी देगी ही नहीं।
0: हुजूर माफ करो हमको।

0: सोचने में जरा गड़बड़ी हो गई, हम तो गरीब आदमी हैं।
1: अच्छा कोई बात नहीं है। तांगे वाले
0: जी,
1: यहाँ से हुलियूर कितनी दूर पर है? और तुम देखो एक बार बोल रहे हैं, किराया कितना लोगे?
0: वो गांव तो यहाँ से 4 मील की दूरी पर है साहब, और वहाँ तक जाने के लिए 6 रुपए दे दीजिएगा।
2: देखो जी, ये तो 4 मील बताता है। इसके तांगे में तो कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा।
1: लगे।
2: नहीं, हम तांगे से नहीं जाएंगे। कहीं टैक्सी हो तो बुला लीजिए ना। देखिए, वहाँ दूर एक कार खड़ी है।
1: खड़ी है।
2: हाँ, शायद वो टैक्सी भी हो, जरा पूछिए ना।
1: तांगे वाले, देखो भाई, हमको जल्दी जाना है।
0: अच्छा,
1: क्या यहाँ कोई टैक्सी मिल सकती क्या?
0: टैक्सी?
1: हाँ
0: साहब, एक टैक्सी है। वो देखिए ना, वो खड़ी हुई है।
1: वो
0: आप चाहें तो उससे जा सकते हैं।
1: क्यों भाई, तुम हंसने क्यों लगे? क्या बात है?
0: आपकी बात पर हंसी आ गई राव साहब।
1: अच्छा,
0: आप उस टैक्सी में सफर करके आइए, तब मालूम होगा आपको।
2: अपनी लुकसार पर ये तांगे वाले ऐसे मजाक कर रहे हैं। आइए टैक्सी वाले से पूछेंगे, वैसे तो हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे।
1: टैक्सी!
3: आया साहब, आया। नमस्ते साहब।
1: नमस्ते।
3: नमस्ते बहन जी, क्या आपको टैक्सी चाहिए?
2: हाँ, हमको हुलियूर जाना है। सुनो
3: जी,
2: किराया क्या लोगे?
3: बहन जी, यहाँ से बस 4 मील के फासले पर है, 10 मिनट में आपको पहुँचा दूंगा और 10 रुपए किराया होगा।
2: अजी सुनते हो? ये 10 रुपए कह रहा है।
1: तो रहा है,
2: हम 8 रुपए दे देंगे इसे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: वो तांगे वाला भी तो 6 रुपए मांग रहा था।
1: ये टैक्सी वाले
3: जी,
1: हम 8 रुपए देने को तैयार भी चलोगे क्या?
3: साहब, चाहे आप पीप पर मारो लेकिन पेट पर नहीं साहब। आजकल इस काम में कुछ भी हाथ नहीं लगता साहब।
1: वो तो ठीक है।
2: अजी फिर कभी और दे देंगे। चलो अब, वैसे तो आते समय भी हमको टैक्सी चाहिए ही।
1: हाँ,
2: तब तुम्हारी ही टैक्सी से आएंगे हम।
3: जी, आने का तो मुझे भरोसा नहीं है बहन जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलिए टैक्सी में बैठ जाइए। राव साहब, कुछ एडवांस मिलेगा?
1: एडवांस? अच्छा भाई, ये लोग 10 का नोट, अब बाकी 2 रुपया जरा वापस।
3: जी वो मेरे पास इस वक्त 2 रुपए है नहीं साहब, बांध दे दूंगा। आप टैक्सी में चढ़िए, बैठिए ना।
2: तुम तो सिर्फ टैक्सी में चढ़ने को बता रहे हो, लेकिन मैं कहती हूँ दरवाजा खुलेगा तब तो। आप जरा कोशिश करके तो देखिए जी।
3: नहीं, जरा रुकिए।
2: क्यों?
3: दरवाजे में ऑटोमेटिक ताला टूट गया है साहब, इसलिए रस्सी से बांधा है अंदर उसको। मैंने समझा तो उसे खोल के रखा है। बैठिए साहब, आप चढ़िए।
1: और शांता, टैक्सी में बैठे।
2: क्या हुआ?
3: अरे क्या हुआ साहब, क्या हुआ?
2: अजी कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
1: होगा क्या तुम्हारा सर, इधर देखो, वो स्प्रिंग सीट से बाहर झांक रहा था, उसको देखे बगैर हाथ रखा तो वो चुप गया।
2: ये क्या है रे टैक्सी वाले? छी छी छी छी, टैक्सी में धूल ही धूल भरी है, सारे सीट फट गए हैं, और स्प्रिंग चुभकर कहीं सेप्टिक हुआ तो?
3: जी नहीं, ये बात नहीं मैम साहब, नए सीट अभी दर्जी के पास हैं, और इस गांव में आप जानते होंगे कि रोड तो पक्के हैं नहीं, चाहे जितना भी साफ करो उनमें धूल अवश्य जमा रहेगी।
2: ठीक है, चलो अब। तुम्हारी टैक्सी भी क्या अजीब है।
3: हाँ बहन जी, ये फॉरन की टैक्सी है ना।
2: फॉरन की?
3: जी।
2: ठीक है, बस करो, चलो आप।
3: साहब, आपके पाँव के नीचे वो हैंडल रखा है ना, वो सा देना साहब।
1: अच्छा।
3: हाँ जरा।
1: ये ले।
3: जी। भाई साहब, जरा आपको गाड़ी ढकेलना होगा, वो क्योंकि नया बैटरी डलवाया है ना, इसलिए स्टार्टिंग ट्रबल हो रहा है मैम साहब।
2: तो क्या तुम्हारी गाड़ी गांव पहुंचेगी कि नहीं?
3: नहीं साहब, आप ऐसी बात क्यों कहती हैं? आप जरा ढकेलिए, मैं स्टीयरिंग में बैठता हूँ। हैं भाई साहब, राव साहब, जरा जोर से।
1: अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता भाई,
3: थोड़ा जोर साहब, थोड़ा।
1: कितनी देर से ढकेल रहा है यार,
3: थोड़ा सा।
1: अरे तुम्हारी फॉरेन की नाम ही
3: बस चालू होती साहब।
1: अरे पेट में चूहे भी बोलने लगे यार,
3: जरा सा थोड़ा सा।
1: तो जय मलाई वाले।
3: चलो चलो, आइए साहब, राव साहब, जल्दी बैठिए। अब ये टैक्सी रुकेगी नहीं साहब।
2: रुकेगी नहीं।
3: हाँ जल्दी बैठिए,
2: जल्दी करिए।

0: जी वो मंदिर का कलश देख रहे हैं राव साहब, वही गांव है साहब।
1: अच्छा
2: सुनात ने, अजी गांव आ गया है,
1: आ गया, आ गया।
2: अब खाइएगा A1 दही, चाहे जितना भी खाना चाहे।
1: टैक्सी वाले, अरे रोको ना भाई, इसी को हुलियूर बताते हो और वैसे ही आगे निकल रहे हो, है ना यही हुलियूर?
0: हाँ साहब हुलियूर तो यही है। हाँ? लेकिन टैक्सी का ब्रेक नहीं लग रहा है साहब।
2: क्या कहा? अच्छा, ब्रेक नहीं लग रहा,
1: ब्रेक नहीं लग रहा है?
0: जी हाँ।
1: क्या बात कर रहे हो, तुम किसी को मरवा डालोगे यार, समझे ना, तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
0: आप खाए को डरते हैं साहब, कुछ भी फिक्र मत कीजिए, वाकई शुरू से ही इसमें ब्रेक नहीं है साहब। स्टेशन से आते समय ठीक बाग पर हम पेट्रोल भरवाते हैं तो गाड़ी यहाँ आकर अपने आप रुक जाती है, लेकिन आज मेरे भाई ने भरवाया है, लेकिन लगता है गदेरा टंकी फुल कर दी है साहब, इसलिए कुछ साहब गड़बड़ हो रहा है साहब।
2: ये क्या है, पहले तो इसमें ब्रेक नहीं, ठीक है नहीं है तो फिर उसकी मरम्मत करवानी चाहिए।
0: जी जी जी,
2: मुसाफरों को पहले ही बता देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का अच्छी बात नहीं।
0: जीने भाई साहब, इसमें धोखे की कोई बात नहीं, ब्रेक का एक पार्ट हमारे देश में मिलता ही नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी फॉरेन की ठहरी ना।
1: बाहर में जाए तुम्हारी टैक्सी, ये बताओ कि अब करोगे क्या? हर बार अब इस खटारे को फॉरेन बताता है, न तो सारी शुरू होती है और शुरू हुई तो न ही एक जगह पर रुकती, पता नहीं ऐसे टैक्सी को लाइसेंस क्यों दिया जाता है।
0: आप खाम खा नाराज होते हैं साहब, बगैर ब्रेक की टैक्सी चलाने की हमें तो आदत है। अच्छा जी इधर सुनिए, उस स्कूल के मैदान में मैं टैक्सी घुमा लेता हूँ, लौटते समय अगर यहाँ रुक गई तो ठीक है, अगर नहीं रुकी तो फिर से आपको स्टेशन तक जाना होगा। जी जी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं भाई ने पेट्रोल कितना डलवाया है।
2: ठीक है, बदतमीजी है क्या तुम हमको फिराते रहोगे?
0: तब आप एक काम कीजिए भाई साहब।
1: फिर वो कौन सा काम?
0: जी वो कोई बड़ा काम नहीं है, अभी आते समय गांव के बाहर वो बड़ा नाला देखा था ना आपने?
2: नाला?
0: हाँ वो नाला,
1: उसे क्या मतलब?
0: हाँ मैं टैक्सी धीरे चलाऊंगा, वैसे तो वहाँ बालू भी अधिक है, बस आप और भाई साहब आहिस्ता से कूद जाइए।
1: कूद जाइएगा?
2: हाँ कूद जाइए, क्यों टैक्सी वाले टांग तुड़वा लेने को कह रहे हो, तुम्हारी फौरन की टैक्सी का भी क्या कहना?
0: जी नहीं मैम साहब, कई बार मैं ऐसे ही सवारी उतारता हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, फिकर मत कीजिए, मैं टैक्सी धीमी रफ्तार से चलाऊंगा। हाँ
1: अच्छा, तो देखो बहुत धीमी चलाना, देखो भूलना नहीं।
0: ये रहा नाला साहब, आज तो कूदिए, आज तो कूदिए, आज तो
2: कूदिए ना।
1: अरे नहीं
0: कूदिए,
1: मैं सोच रहा हूँ कि कैसे।
2: जी सोचिए मत,
0: क्या सोचते हैं साहब, जल्दी कूद जाइए ना, नहीं तो फिर स्टेशन तक जाना पड़ेगा और घुमाने के लिए वैसे जगह भी नहीं है। हाँ कूदिए कूदिए कूदिए,
2: हाय राम, जान बच गई। अजी मैं पूछती हूँ कहीं आपको कुछ चोट तो नहीं लगी?
1: नहीं ज्यादा चोट नहीं लगी, सिर्फ होठ और घुटने में कुछ घाव हुआ है। अच्छा हुआ कि दही खाने आए थे, मगर खाए नाले का कीचड़।
2: ठीक है ठीक है, रहने भी दो ना, यही पानी है।
1: हाँ।
2: हाथ मुंह धो लीजिए।
1: हाँ, हाँ।
2: घर जाएंगे।
1: हाँ।
2: मालिश के बाद गर्म पानी से स्नान करेंगे।
1: हाँ।
2: तो सब ठीक हो जाएगा।
1: अरे शांता, अरे गजब हो गया,
2: क्या हुआ?
1: हम सूटकेस लेना भूल गए।
2: अरे ओफ़, ये क्या किया तुमने? अजी कूदते समय लेके कूदना चाहिए था ना।
1: अरे नहीं मैं भूल ही गया, अब उस टैक्सी वाले को ढूंढना होगा।
2: टैक्सी वाले को ढूंढना होगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो जाएगा भी कहाँ अजी, वो स्टेशन में ही रहेगा, वही टैक्सी में सूटकेस पड़ी रहेगी, किसी से मंगवा लेंगे। चलिए चलिए अब घर चले।
1: बेटे ओ बेटे
0: जी,
1: अरे भाई यहाँ ये कुलकर्णी साहब कहीं रहते हैं क्या? उनका घर कहाँ है?
0: कुलकर्णी का घर वो दूर जो काले पत्थर का घर दिख रहा है ना।
1: हाँ हाँ।
0: बस वही उनका घर है।
1: अच्छा
0: आइए आइए, मैं आपको पहुँचा देता हूँ।
1: चलो भाई।
2: रिंदु, अरे ओ रिंदु,
1: अरे दोपहर का वक्त है, शायद खा पीकर सो गए होंगे, हमारे आने को उन्हें क्या खबर भाई?
2: ठीक है रिंदु, अरे ओ रिंदु।
0: भाई साहब, बहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं, दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं, वहाँ ऊपर देखिए ताला पड़ा है।
2: क्या
1: ताला?
0: हाँ कल ही वो लोग गांव चले गए हैं।
2: अरे बाप,
0: शायद किसी की शादी में गए हैं, हो सकता है उनके लौटने में 5-6 दिन लग जाए।
2: 5-6 दिन?
0: क्या

0: आपको मालूम नहीं था?
1: नहीं तो?
2: अरे बापे, पत्र लिखने के लिए मैंने पहले ही कहा था शांता, मगर तुम मानो तब ना, आखिर तुम्हारी बात मानकर बंदर बन बैठा। एवन दही अच्छा खाया मैंने।
3: भाड़ा लाओ साहब, भाड़ा, तांगे वाला भाड़ा। मेरा घोड़ा तो सरदार है।
4: अरे आप तो उस टैक्सी में आए थे ना साहब? टैक्सी कैसी थी साहब? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपने सुना नहीं। क्या आप तांगे में आएंगे साहब? आइए मैं ले चलता हूँ।
2: अच्छा भाई चलो, अगर तुम पहले ही सावधान कराते तो हम रॉकेट में क्यों जाते? जल्दी चलो, हमको स्टेशन पहुंचना है।
4: ये कह रहा साहब, आपके होंठ फूल गए हैं, बर्रे ने काटा है, क्या हुआ?
2: क्या हुआ? इन होठों ने A1 दही खाया है, समझे?
1: जी हाँ, मलाई वाला दही, A1 दही।
5: मलाई वाला दही। श्रोताओं, अभी आप एम गोविंद के लिखे मूल कन्नड़ प्रहसन का ये हिंदी नाट्य रूपांतरण सुन रहे थे। रूपांतरकार थे GB आलतकट्टी, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं रांझना फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शिराज उप्पल और जसविंदर सिंह ने। गीत इशाद कामिल का है, संगीत ए आर रहमान का।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं नील एंड निक्की फिल्म का गाना। सलीम मर्चेंट और श्वेता पंडित की आवाजों में, गीत इशाद कामिल का है, संगीत सलीम सुलेमान का।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

आइए अब सुनते हैं एक पहेली लीला फिल्म का गाना। इसे गाया है मीत ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह ने। गीत कुमार का है, संगीत मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी

0: ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not.

0: allow your friends, family members also should not take drugs.
1: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ. यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
5: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है।

गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों के गाए फिल्म पेंटर बाबू के इस गाने के साथ। इसे लिखा है मनोज कुमार ने, संगीत उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वंश फिल्म का गाना। इसे लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा आनंद मिलिंद ने।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक को सुनिए। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। गीत है नवाब आरजू का, संगीत बप्पी लहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
4: सर, मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
3: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
4: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
5: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
3: ऐसी अनमोल यादें

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरत के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू।

ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: इन दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट।

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी

खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: अच्छा या गीत में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे फिल्मी गाने जिनके दो संस्करण हैं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

क्या किसी स्केल से नापा जा सकता है प्यार? कैसे कहें कि सही सही बयां हो जाए प्यार? अल्फाज नाप में जैसे कुछ कम पड़ जाते हैं, कई बार अल्फाज की बजाय खामोशी से काम लेना मुनासिब होता है।

जैसे आसमान पर चमके थोड़ी देर सूरज और फिर गुम हो जाए बादलों की ओट में, जैसे पत्ते पर ठहरे पानी की बूंद और हवा का झोंका आकर उसे ढुलका दे, जैसे होंठों पर तैरे एक सूक्ष्म मुस्कान और फिर छा जाए गहरी उदासी, इतनी थोड़ी सी खुशी, इतना थोड़ा सा साथ।

आज के छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनके दो संस्करण हैं, और सुनने के आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए हमने किसी अप्रत्याशित मोड़ पर इन दोनों संस्करणों को आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: फिल्म महबूबा, आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।
1: खिल के बिखरने को खिलते हैं गुलियां।
0: फिल्म शर्मीली, नीरज सचिन देव बर्मन।
1: हमें तुमसे प्यार कितना
2: ये हाल नहीं।
0: फिल्म कुदरत, मजरूह सुल्तानपुरी, राहुल देव बर्मन। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है।

0: एचआईवी एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: एक और गीत जैसी भी थी आवाज़ विच।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: तो लो हुन हाजिर है अगला गाना हंसराज हंसी आवाज विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जिया

0: यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तो अज दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:25 ते तुहाडी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।